फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिसे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में

0: समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आज की गई मेहनत ही कल के भविष्य का निर्माण करती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 290। उसके बाद 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। सुनिए इस श्रृंखला का 8वां भाग। कलाकार हैं तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत हमेरा ही प्यार के 7:30 पर। 8:15 पर त्रिवेणी, आलेख और स्वर है राजेश झा का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार कल्याण जी पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षावत और राष्ट्रीय नाटक नाट्य विद्यालय यानी NST नई दिल्ली के पूर्व निर्देशक पद्मश्री वामन केंद्री से यूनुस खान की

बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहयोग है योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम, 12:05 से सजेगी यादों की महफिल, 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। बजकर 30 मिनट पर सुनिए सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे पिटारा में सुनिए सेहतनामा, बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत MD डर्मेटोलॉजिस्ट से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति है तेजश्री कांबले की। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। पर सुनिए संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए एक ही फिल्म से, आज की फिल्म है आई मिलन की रात। हवा महल में सुनिए नाटिका महाकवि तुक्कड़ की सगाई, लेखन है शारदा प्रसाद मूर्शिंदे की, निर्देशन है जयदेव शर्मा कमल का। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8 बजे। पर सुनिए रात्रि चित्रलोक, 9 बजे सुनिए आपके लिए कार्यक्रम, 10 बजे छाया गीत, आलेख और स्वर है सलमा सैयद का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की, 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

लंका दहन करके पवनसुत हनुमान सीता जी का समाचार लेकर समुद्र के इस पार आ चुके हैं। प्रभु से निवेदन करते हैं, हे करुणा निधि, अशोक वाटिका में सीता माता का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः शीघ्र ही चलकर दुष्टों का नाश करके उन्हें ले आइए। जनक नंदिनी के क्लेश का वर्णन सुनकर श्री राम की आंखों में अश्रु उमड़ आए। बोले, मन वचन और तन से जिसे केवल मेरा ही आसरा है, उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। हे पुत्र, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला कोई भी देव, मनुष्य अथवा अन्य तनधारी नहीं है। मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हनुमान उनके चरणों में आ गिरते हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 290।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार दास बाबू।
1: मिश्रा जी, आज फिर हम उपस्थित हुए हैं इस ताल प्रवाह में। ताल प्रवाह में चौताल, तीन ताल, आड़ा चौताल, एक ताल, बहुत ताल
2: है। बहुत ताल है, अनगिनत ताल है।
1: तो आप हमें बताएं, आज हमारे श्रोताओं को कौन सा ताल आप सुनाएंगे?
2: आज मेरी इच्छा हुई कि मैं एक ताल 12 मात्रे का होता है, हम उसकी चर्चा करें।
1: और बहुत अच्छी बात है
2: जी दास बाबू। एक ताल एक ऐसा ताल है जो बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, इसके साथ बड़ा उपयोग किया जाता है
1: जी।
2: एक ताल, तीन ताल भी बजाते हैं, बट ये जो ताल है एक ताल, तराना के साथ, विलंबित ख्याल के साथ।
1: तो मैंने तो एक

0: पंडित रविशंकर जी को एक ताल में झाला भी बजाते हुए
1: सुना है। हाँ जी करते हैं, हम सोलो भी बजाते हैं एक ताल में, उसके लिए हमें कम से कम अच्छा टाइम चाहिए। तो श्रोताओं को आज हम एक ताल के बारे में बात करते हैं, और एक ताल जब हम संगत करते हैं गायक के साथ तो इसमें बहुत ठहराव होना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं आपको कि तबला वादक एक ऐसा साधक होना चाहिए कि उसको चारों पट का तबला आना चाहिए। गाने के साथ बैठा दीजिए तो गाने के साथ संगत होना चाहिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठाई तो उस इंस्ट्रूमेंट का तबला बोलना चाहिए, नाच के साथ बजाए तो नाच वाला तबला होना चाहिए, और अगर वो सोलो बजा रहा है तबला वादक तो फिर सोलो वाला तबला होना चाहिए, तो चारों पट का तबला आना चाहिए। तो आज हम एक ताल की चर्चा करते हैं जो 12 मात्रे का होता है, उसमें 6 विभाग होते हैं।
0: इसी सिलसिले में एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा, कुछ कुछ ऐसी बंदिशें भी मिलती हैं जिसमें एक ताल 3 के छंद में जाता है
1: जी,
0: उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: जी, उसका जो अंदाज है ना, अगर इंस्ट्रूमेंट में बज रहा है कि धिन धिन धागे तो वो 3-3 का छंद आता है, वो है वही एक ताल बजाएगा, लेकिन छंद जरा चाल उसकी दादरा की चलन हो जाती है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि दादरा और 12 मात्रा आपस में संपर्क
0: का दुना।
1: हाँ, तो हम एक ताल में 12 मात्रा होता है, उसमें 6 विभाग होते हैं, 4 ताली और 2 खाली। दूसरी बात, 12 मात्रा का एक ताल और है जिसका नाम है 4 ताल, जिसे हम चौताला कहते हैं।
0: जी,
1: धा धा दिन ता कीट धा दिन ता टेटे का ता गदी गन धा धा,
0: पखावज में बस
1: पखावज कांग है ये।
0: जी,
1: ये पखावज, हाँ जी, हाँ जी, ये पखावज कांग है। और धन्यवाद देता हूँ मैं अपने गुरु जनों का जिन्होंने तबले को पखावज के अंदाज से भी बजाया है। तो प्रस्तुत करता हूँ एक ताल चढ़ी हुई गति।
0: वाह।

0: श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा और तार प्रवाह और आप, ये बनारस का जो एक अंदाज है ना दास बाबू
1: जी,
0: उसमें कवित परन, बोल परन, गज परन, कविताओं की जो रचना जो हम पढ़ते हैं कविता, वो तबले से बजा के दिखाते हैं जैसे एक नर्तक भाव से दिखाता है
1: जी।
0: उसी हिसाब से ये हमें पूरा छूट है। तो एक पठन करता हूँ, नीर तत नंद नंद छोम छ नोम तोम तत्धा दिग दिग थी लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गत त्रिभंग था खेलत भुज मेलत लपक झपक राधा ललिता चंद्रावल दियो बोर रंग बोर बो सर बोर बोर बनवारी हारी धाति धा धाति तूना।
2: अब ये जो शब्द मैंने पढ़ा है तबला तबला

0: बाजत डमरू शिव शंकर, ये पढ़ंत भी है, बाजत डमरू शिव शंकर की शोभित अंग में भभूति, गले सर्प मुंड मान तीन नृत्य जटागंग है चक्रदार। अब ये शिव तांडव का एक अंदाज है
1: जी,
0: तो मैं इसको दो अंग से कोशिश करूंगा कि इसे अगर पार्वती करेंगे तो कैसे करेंगे और शिव करेंगे तो कैसे
1: क्या करेंगे? बात है,
0: तो पार्वती ये बड़ा बेस, ये तबला हो जाएगा
1: जी।
0: और बेस सुनिए श्रोता,

0: हमेशा गुरु जी बोलते थे हमारे
1: जी
0: था, तो एक मैंने एक अपना अपना एक अंदाज है, कत का बोल कैसे निकलेगा
1: जी।
0: मेरे गुरुजी मदन मिश्रा और हमारे शंभुनाथ मिश्रा जी ने बताया कि कत का अंदाज

0: आपने कहा ना तीन का छंद।
1: जी
2: क्या बात,

जो घेगज रखत बड़ा सुंदर अंदाज है कत्ते घेगज रखत कत्ते घेगज रखत घेगज रखत घेगज धा घेगज धा कत्ते धा कत्ते घेगज रखत कत्ते घेगज रखत घेगज रखत घेगज रखत घेगज रखत धा कैसे बोल निकलेगा

0: ये एक ताल हो गया
1: जी,
0: इसको पखावज के अंदाज से कैसे लेंगे
1: जी?
0: क्योंकि कुछ कलाकार भारत में ऐसे हुए हैं जिनके साथ हमने बहुत अच्छा काम किया है, पंडित अर्जुन सहजवाल
1: जी,
0: पखावज, पंडित रामदास जी पखावज, पंडित भवानी शंकर
1: जी,
0: तो ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिला है।

0: एक ताल बजाते बजाते मुझे बड़ा सुंदर गाना याद आ गया।
1: क्या बात?
0: आपको खुद पता है, वाह वाह फारूक भाई, कि फिल्मी जो गाने पहले बजाए जाते थे, अभी तो काफ़ी चेंज हो गया, वरना हमेशा क्लासिकल बेस को लेके गाना बजाना ये सब होता था। तो मुझे गाना याद आया, लता दीदी गाई हैं उसमें, खास एक ताल उसमें बजा है
1: जी,
0: आपको याद है, शंकर जय किशन जी का म्यूजिक है उसमें, मन मोहना बड़े झूठे।
1: क्या कहने?

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी 8वीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स में सरकार ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया और भारत के स्टार्टअप

0: చూపిస్తాడు.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसनूर गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसनूर में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। वे आज रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को फिर दोहराया है। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर परेश एम ने प्रतिष्ठित कलिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। हंगरी के नागी कलिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रदेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। भारत आज कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ

300 रन पर 5 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल शाम स्टंप्स तक ध्रुव जुरेल और सारांश जैन नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाया। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस के तहत आज भोपाल में कॉन्क्लेव। 130 से ज्यादा केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थान होंगे शामिल। सांची उप डाकघर का हुआ कायाकल्प। आज शाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से होगा लोकार्पण। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी। डिंडोरी बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम रीवा पहुंचकर रीवा शहडोल संभाग में अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर व्यक्ति तक राहत पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाओं और साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित गांवों और नगरी वार्डों में विशेष चिकित्सा शिविर लगाने और पानी के स्रोतों के क्लोरिनेशन कराने को कहा गया है। उन्होंने फसल और मकानों के हुए नुकसान का तत्काल सर्वे कर आरबीसी 64 के तहत सहायता देने के भी निर्देश दिए।
1: किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरे प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह हमारे द्वारा दिया जाए, तो इस तारीख से 27 तारीख जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना वहाँ

0: को सम्मानित भी करेंगे। इस दौरान किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच संवाद भी होगा। प्रदेश को 2047 तक समृद्ध बनाने के लिए सरकार आज भोपाल में केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ कॉन्क्लेव कर रही है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो, डीआरडीओ और केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत 130 से ज्यादा संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव का शुभारंभ सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य विचार वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस है, यानी हर संस्थान प्रदेश के विकास के लिए एक संकल्प देगा। राज्य सरकार के विभाग खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग, पर्यावरण और कौशल जैसे क्षेत्रों की अपनी चुनौतियां संस्थानों के सामने रखेंगे। इसके बाद संस्थान अपने शोध, तकनीक और विशेषज्ञता के जरिए इन समस्याओं के समाधान की दिशा सुझाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सांची के उपडाकघर का आधुनिकीकरण और लुक एंड फील सुधारने का काम पूरा कर लिया गया है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए डाकघर को आधुनिक और नागरिकों के लिए सुविधाजनक स्वरूप दिया गया है। आज शाम करीब 5 बजे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और डाक विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते डिंडौरी जिले ने जुलाई माह के मध्य में देश के 100 चयनित जिलों में प्रथम रैंक हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे डिंडौरी संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया।
2: डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत कृषि, मिलेट उत्पादन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, सिंचाई तथा जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का समन्वित रूप से संचालन किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी जिले ने देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह के मध्य प्रथम रैंक हासिल की है। योजना के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई एवं कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। डिंडौरी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वनोपज और ग्रामीण आजीविका पर आधारित है। जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ ही श्री अन्न के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिले में 34,700 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो कुटकी की खेती की जा रही है। जिले के पारंपरिक कोदो कुटकी उत्पादों को GI टैग प्राप्त होने से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
0: प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में नियमों के पालन की जांच के लिए कल भोपाल के 3 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया। आयुष्मान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भारत अरविंद शाह और विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए अनियमितताएं मिलने पर यशवी मल्टी स्पेशलिटी, सूर्यांश मल्टी स्पेशलिटी और मारुति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को योजना से तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए तीनों अस्पतालों को 10 दिन में जवाब देने को कहा गया है। श्रावण मास के अंतिम और चौथे सोमवार को प्रदेश में आस्था और भक्ति का माहौल है। इस मौके पर भगवान महाकाल सहित प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। खंडवा के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में आज भगवान की भव्य शाही सवारी निकाली जाएगी। वहीं आगरमालवा में राजाधिराज श्री बैजनाथ महादेव और मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव की पारंपरिक शाही सवारी भी निकलेगी। इन सवारियों में अखाड़े, आकर्षक झांकियां और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ट्रफ, चक्रवाती सिस्टम और निम्न दाब क्षेत्र के असर से पूर्वी हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडौरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दोनों जिलों में करीब 4 से 8 इंच तक बारिश का अनुमान है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन, जबलपुर, मंडला, सिवनी, शहडोल, रीवा और सीधी समेत प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, गुना और आसपास के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। जबलपुर पुलिस की महिला आरक्षक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेसबॉल की खिलाड़ी वर्षा पटेल ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट

एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्षा ने 21 अगस्त की सुबह 9:07 पर 5,642 मीटर की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा और मध्य प्रदेश पुलिस का झंडा फहराया। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई है। दूसरे दौर के आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को इस मुकाबले में जीतना जरूरी था, जबकि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हार से बचना था। वहीं क्रिकेट में भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में 300 रन पर 5 विकेट से अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाएगा। भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले रखी है। वहीं एशियाई खेल के तहत जापान के आईची प्रांत और नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खिलाड़ियों का चयन एथलेटिक्स, क्रिकेट, कैनो, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग और सॉफ्ट टेनिस समेत 10 खेलों के लिए किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में 25 खिलाड़ी खेल अकादमी और पूर्व अकादमी से हैं, जबकि 7 खिलाड़ी गैर अकादमी श्रेणी के हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित जननायक समारोह का समापन गोंड नायक राजा हीरा खान सिंह क्षत्रिय पर केंद्रित प्रभावी मंचन के साथ हुआ। झाबुआ में खाद्य सुरक्षा दल ने आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दुकानों का निरीक्षण कर कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस, वाटर टेस्टिंग और स्वच्छता अभिलेखों की जांच की। डिंडोरी पुलिस लाइन परिसर में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छतरपुर में त्वरित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए गंभीर जन्मजात विकृति से पीड़ित नवजात को पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा से बेहतर उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इंदौर और गुना में दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद ए मिलादुन नबी के अवसर पर जुलूस और चल समारोह निकाले गए। शिवपुरी में पेयजल परिरक्षण अधिनियम में ढील देते हुए जिला प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। मंडला जिले के बिछिया स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में वन स्टॉप सेंटर की ओर से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जबलपुर के नेपियर टाउन में संभाग स्तरीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने DNA जांच, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस के तहत आज भोपाल में कॉन्क्लेव। 130 से ज्यादा केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थान होंगे शामिल। सांची उप डाकघर का हुआ कायाकल्प। आज शाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से होगा लोकार्पण और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी। डिंडौरी बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेमंत कुमार और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे चंद्रसेना इस फिल्म से ही गाना, बोल पंडित मधुर के, संगीत कल्याण जी वीर जी शाह का। आइए सुनते हैं एक जरूरी सूचना।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे डॉन फिल्म से ये गाना, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

किते चली जुदाई है जहर जहर पिया नहीं जाए जुदाई है जहर जहर।

0: मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे कसौटी फिल्म से गाना कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुम्हें
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: दिना दिना,

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे हाथ की सफाई। इस फिल्म से गाना गुलशन बावरा के बोल, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। हमेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं कहीं प्यार ना हो जाए इस फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले। इस फिल्म से ये गाना आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

दिल भी तेरा हम भी तेरे, इस फिल्म से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना। शमीम जयपुर की, माफ़ कीजिएगा शमीम जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ

0: पार्यशी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इसी के साथ आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से

0: संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में

0: 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित करीजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी करीजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: हर हर महादेव।
4: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।

0: तरीके से होगा स्थापित। रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोकसत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर। आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता। दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नव भारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन कंट्री स्पेस सेक्टर टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट अट्रैक्ट्स ग्लोबल स्पेस टैलेंट टू इंडिया। Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kanizsa Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
3: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी भी कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
3: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी भी कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत।
2: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategy

0: Express. Hindustan Times refers to the enumeration exercise noting through forests and across streams, census set to reach Bastar's former red strongholds. As Bengal gets 3,500 crore rupees of defence push, the Asian Age, quoting the defence minister, writes, India capable of becoming global shipbuilding hub. In a significant milestone, DMRC becomes India's first metro organisation to achieve ISO certification to the latest international standard for asset management, reports the Statesman. The Times of India mentions a border report which projects India to surpass China in affluent consumers by 2036. And finally, the Indian Express cites railways roll out waterless urinals for pilots of India's most powerful locomotives. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M. wins Kenitza Open title in Hungary. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा। और सुरमई सवेरा में हम स्वागत करते हैं आपका एक नया उजाला और एक नया दिन अपनी एक नई ऊर्जा के साथ हमारे जीवन में शामिल हो गया है। तो स्वागत करते हैं हम इसका और खुशी की बात है कि हमारे लिए ये एक नया दिन हमारे जीवन में शुरुआत कर रहा है हमारी खुशियों का। तो आज हम बात करेंगे अपने जीवन के बारे में कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाते हैं। अच्छा काम करके, पॉजिटिव सोच का इस्तेमाल करके, व्यस्त रह के। आगे हम इसी विषय पर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: अपने जीवन में हम सभी सोचते हैं कि हमें

में सब कुछ मिल जाए, सब कुछ अच्छा हो। वैसे ये अच्छी बात है, मगर उम्मीद हर बात पे मत लगाइए। आपकी क्षमता कितनी है, आपकी रुचि किस ओर है, इस पर भी ध्यान दें तो बेहतर हमारे चुनाव होंगे और हमारी जिंदगी आसान होगी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट

0: पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इन दिनों रिमझिम फुहारों का मौसम है और इस बारिश ने सब कुछ हरा भरा माहौल कर दिया है। क्या पेड़, क्या फूल, धरती सभी हरी भरी हो गई हैं। अगर हम बात करें अपने घरों से तो हम सभी कोई ना कोई पौधा जरूर अपने घर पे गमलों में बगीचे में उगाते होंगे, है ना। बारिश में इनकी वैसे देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। अपने पौधों की जरूरी होगा इस मौसम में नियमित कटाई छटाई करते रहे। मौसमी सब्जियां जैसे पालक, धनिया, मिर्च, बैगन, लौकी, तुरई आप लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में या फिर अपने गमलों में भी। साथ ही इसे छत, बालकनी, खेत, उद्यान के हिसाब से आप चुन भी सकते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
3: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या
4: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
3: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
4: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
1: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: बारिश का मौसम बहुत सुहावना होता है ना? मगर इन दिनों सर्दी, जुखाम, वायरल फीवर जैसी कई बीमारियां हर दूसरे घर में पाई जा रही हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएं, क्योंकि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तभी हम इन बीमारियों से निजात पा सकेंगे। बरसात के समय हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ताजा भोजन, स्वच्छ पेयजल हमें पीना चाहिए और साथ ही साथ बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। और ज़रूरी ये होगा कि हम अपने फल सब्जियों को साफ पानी से धोकर इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होंगी।

बारिश के दिनों में जरूरी होगा कि हम अपने घरों में स्वच्छता का ध्यान रखें। पानी छतों पर किसी ऐसी जगह पर जमा ना होने दें, क्योंकि पानी के जमा होने पर मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर मच्छर है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। साथ ही अपने घरों में खुले डिब्बे, टायर, कूलर या ऐसी किसी भी जगह पर पानी जमा ना होने दें।

0: कार्यक्रम सुरमई सवेरा जारी रहेगा, लेकिन अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित

0: शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। दो दिवसीय सम्मेलन फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यमों से आयोजित किया जाएगा। प्रदेश को वर्ष 2047 तक समृद्ध बनाने के लिए सरकार आज भोपाल में केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम रीवा पहुंचकर रीवा शहडोल संभाग में अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर व्यक्ति तक राहत पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत कल अस्पतालों में नियमों के पालन की जांच के लिए 3 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया और अनियमितता पाए जाने पर 3 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए योजना से फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। श्रावण मास के अंतिम और चौथे सोमवार को प्रदेश में आस्था और भक्ति का माहौल है। इस मौके पर भगवान महाकाल सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मानसून ट्रफ, चक्रवाती सिस्टम और निम्न दाब क्षेत्र के असर से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए डिंडौरी और बालाघाट जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल्स में जगह नहीं बना पाई है। दूसरे दौर के आखिरी मैच में भारत ने कल ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को इस मुकाबले में जीतना जरूरी था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: कार्यक्रम सुरमई सवेरा लेकर हम फिर हाजिर हैं और हम बात कर रहे थे बारिश के मौसम की। तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाना हम सब पर निर्भर करता है। वर्तमान में प्रदूषण पर्यावरण असंतुलन क्यों हो रहा है हम बखूबी जानते हैं। अपने आसपास अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें, संकल्प लें कि त्योहार हो, जन्मदिन हो या कोई भी मौका हो, उपहार में हम अपने मित्रों को अपनों को एक नन्हा सा पौधा गिफ्ट करेंगे और ये कहकर कि हम सब मिलकर उसके देखभाल करेंगे और उसे वृक्ष बनाएंगे।

जिस धरती पर हम रहते हैं उसे हरे भरे वसुंधरा कहते हैं, जो हमसे कभी कुछ लेती नहीं, सिर्फ हमें देती है पानी, हवा, फूल, फल, अनाज और ऐसे अनमोल सौगात जिसके सहारे हमारा जीवन सुंदर है, सहज है, हम स्वस्थ हैं। तो कुछ ऐसे कार्य हमें जरूर करने चाहिए जिससे हमारी वसुंधरा स्वच्छ और सुंदर बन जाए। इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि हम अपने घर के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों में भी साफ सफाई का ध्यान रखें, कचरा फेंकने के लिए ब्लू और ग्रीन डस्टबिन का उपयोग करें।

सलीम मर्चेंट और बनी दयाल की आवाज में आप सुन रहे थे बैंड बाजा बारात फिल्म से ये गाना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक सलीम सुलेमान का। अगला गाना कर सकता है आपको थिरकने पे मजबूर, सुनते हैं ट्यूबलाइट फिल्म से ये गाना। कमाल खान, देव नेगी, नक्श अजीज और तुषार जोशी की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का म्यूजिक।

0: अलीशा फिल्म से आप सुन रहे थे अनुष्का मंचंदा, न्यूमन पिंटो की आवाज में गाना, जावेद अख्तर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

शंकर महादेवन और लॉय मेंडोसा की आवाज़ में लक बाय चांस इस फिल्म से एक गाना, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान, लॉय का म्यूज़िक।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी पर।

दोस्तों आनंद जी का जन्म 1932 में आज ही के दिन यानी 2 मार्च को हुआ है कच्छ भूज के गांव

कौन रोड़ी में। वैसे दोस्तों संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी एक रूप हैं, तो केवल आनंद जी की बात नहीं होगी, साथ ही साथ कल्याण जी की भी बात होगी। कल्याण जी आनंद जी फिल्म संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे हम कह सकते हैं दो जिस्म एक जान। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कल्याण जी और आनंद जी दो भाइयों के नाम हैं, पर वो यूं याद किए जाते हैं मानो

वैसे वो दौर जोड़ीदार संगीतकारों का नहीं था, केवल शंकर जयकिशन ही एक नामी गिरामी जोड़ी उस दौर में थी। बाकी सारे संगीतकार जो थे, जो टॉप के संगीतकार थे, वो सब अकेले ही अपने संगीत का काम किया करते थे। हाँ, ये बात और है कि उनके साथ होते थे असिस्टेंट्स, अरेंजर्स वगैरह, पर कल्याण जी आनंद जी वो पहली जोड़ी थी जिसने ऐसे जोड़ीदार संगीतकारों के लिए राहें रोशन की।

दोस्तों संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पहले जो जोड़ी लोकप्रिय थी वो थी शंकर जयकिशन की। इनके अलावा इनके भी पहले जो संगीतकार जोड़ी थी वो पंडित हुसैन लाल और पंडित भगत राम की। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं पहले कल्याण जी वीर जी शाह इस नाम से कल्याण जी भाई संगीत दिया करते थे। कल्याण जी का जन्म कच्छ भूज के गांव कुंडोड़ी में 30 जून 1928 को हुआ। कल्याण जी आनंद जी का संगीत सफर शुरू हुआ है मुंबई के गिरगांव से, जहां उनके पिता वीर जी भाई शाह कच्छ भूज के गांव कुंडोड़ी से आकर मुंबई के गिरगांव इलाके में किराना माल की दुकान चलाया करते थे। उनके एक ग्राहक ऐसे थे जो

संगीत के मर्मज्ञ थे। उन्हीं से कल्याण जी भाई ने प्रथम संगीत की दीक्षा ग्रहण की। वही बात आनंद जी के साथ भी हुई। दोनों ही भाई एक ही गुरु से संगीत की शिक्षा पाते रहे। दोस्तों, मुंबई वैसे ही कला नगरी है और गिरगांव में संगीत की जानकारी रखने वाले कई माहिर उस दौर में रहा करते थे। एक जगह से थोड़ी ही दूरी पर संगीत का एक जाना माना घराना भी था, भेंडी बाजार घराना। कई संगीतकार यहाँ रहा करते थे, स्नेहल भाटकर, दत्ताराम वाडकर, ये नाम उल्लेखनीय हैं। तो कल्याण जी ने संगीत में करियर करने की ठान ली। शुरुआत के दौर में बतौर सपोर्टिंग संगीतकार वो काम करते रहे। अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार हेमंत कुमार के लिए फिल्म नागिन में उन्होंने क्ले वायलिन पर जो धुन बजाई, जिससे उनका नाम सबकी जुबान पर आ गया।

0: कल्याण जी भाई ने इसी दौरान कल्याण जी, वीर जी और पार्टी नामक एक सांगीतिक ग्रुप भी बनाया था, जो संगीत का जीवंत शो यानी लाइव ऑर्केस्ट्रा किया करता था। ये इस प्रकार का पहला लाइव म्यूजिकल शो हुआ करता था। आनंद जी भाई जब विविध भारती के स्टूडियो पधारे थे तो उन्होंने जो बातें कही थी, सुनते हैं उन्हीं से उनके अपने विचार।
1: हर सिचुएशन जो है गाने की, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन कोई तो होगा। तो गिरगांव में हम रहते थे तो दत्तवन गुजराती लोग बनिए जो हैं वो दत्तवन करते हैं, तो दत्तवन लेने के लिए पिताजी ने मुझे भेजा। ये होता था कि दत्तवन जो अच्छे ले आता तो समझदार लड़का है, तो ये एक एग्जांपल होता था। तो दत्तवन लेने को भेजा मुझे, तो वहाँ पे दत्तवन काटने वाली लड़की जो है दत्तवन काट रही थी और उसको बीच में जो जहाँ पे ये होते हैं ना गठान, उनको काट के फेंक देती है। तो बैठे बैठे वो सामने वाले लड़के को मार रही थी, तो उसने भी फिर चिल्ला के बोला, ए क्या कर रही है, ये कर रही है। तो उसने बोला कि तेरे को मैंने थोड़ी मना किया, तू भी मारना। तो एक मुखड़ा आ गया कि भाई देखो ये एंगल रोमांस का ये भी है, तो उसका भी उस भाषा में तो लिख नहीं सकते, तो कंकरिया हमारे करके इशारे यूं करके रख दिया था कि भाई इसको कहीं आएगा तो बोलेंगे कि भाई डाल दो। जहाँ पे वो सिचुएशन आई कि मटके लेके निकल रही, तो बोले ये ऐसे कोई डाल दो कि मटकी के साथ लिंक आ जाए। तो हमने बोला ये करो, तो वो गाना उसमें डाल दिया।

मेरे देश की धरती के इस देश की धरती, पहले लिखा गया था कि इस देश की धरती सोना उगले, उगले ही थी मूर्ति। तो बोले एक तो उगले सब समझेंगे नहीं, तो बोले नहीं वहाँ तो समझते उगले, आपके वहाँ उगले नहीं समझते होंगे, लेकिन ठीक है। लेकिन बोला जो आसान तरीका है, इस गाने में बंद हो जाता है और मेरे अपना लगता है, अपनेपन का एहसास होता है। तो इस पर बहस चल रही थी कि इस रखें कि मेरे रखें। तो इतने उसमें चार पाँच दिन जब भी सिटिंग होती थी कि भाई क्या रखें, मेरे रखें कि इस रखें, इस रखें कि मेरे रखें, यूँ करते करते आखिर में मेरे देश की धरती और ये गाने ने

यहां तक कल्याण जी भाई के साथ बतौर असिस्टेंट काम कर रहे थे आनंद जी भाई, पर जब इन्हें फिल्म सट्टा बाजार मिली तो पहली बार संगीतकार के रूप में पर्दे पर नाम उभरा कल्याण जी आनंद जी। इस जोड़ी के लिए और संगीत के चाहने वालों के लिए यह फिल्म एक यादगार फिल्म है। कल्याण जी आनंद जी को एक के बाद एक तीन फिल्में मिली जिनका संगीत लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। 1959 में मदारी और सट्टा बाजार

1961 में आई थी फिल्म छलिया। फिल्म छलिया का निर्माण किया था सुभाष देसाई ने और इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। राज कपूर और नूतन की इसमें जोड़ी थी।

0: दोनों ही फिल्मों का संगीत जबरदस्त हिट रहा और कल्याण जी आनंद जी के जोड़ी का शुमार अव्वल दर्जे के संगीतकारों में होने लगा। इस जोड़ी ने फिल्म संगीत में जो वैरायटी दी है वो कमाल की है। देशभक्ति के जज्बे से लबरेज उपकार फिल्म का ये गाना देश गान के रूप में जैसे पूजा जाता है।
1: बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं,
2: जीवन का राग

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुल 250 के आसपास फिल्मों में संगीत दिया है दोस्तों, जिनमें से 17 फिल्में गोल्डन जुबली हिट हुई हैं और 39 फिल्में सिल्वर जुबली। मानवीय भावों को सशक्त रूप से अपनी रचनाओं में पिरोना बड़ा ही कठिन काम होता है। इसके लिए उच्च कोटि की सांगीतिक बुद्धि की तो आवश्यकता होती ही है, साथ ही अथक परिश्रम की भी जरूरत होती है, तब कहीं जाकर कोई रचना संगीत प्रेमियों के दिलो दिमाग पर छा जाती है। मुकेश के गाए कितने ही गमगीन गाने संगीत की महफिलों में आज भी गाए और गुनगुनाए जाते हैं।

लता मंगेशकर के लिए कल्याण जी आनंद जी ने 297 गाने बनाए हैं। दोस्तों इसी संगीतकार द्वारा लता जी के लिए कंपोज करने का एक तरह का जो रिकॉर्ड है, ऐसा करने वालों में उनका नाम तीसरे नंबर।

24 अगस्त सन 2000 में कल्याण जी भाई ने संगीत संसार को अलविदा कहा तो लगा जैसे भरी महफिल में कोई उठ के चला गया।

कल्याण जी भाई का जो सपना था नए उभरते कलाकारों को आगे बढ़ाने का, उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने में लगे हैं उनके अनुज आनंद जी भाई। उनके द्वारा स्थापित संस्था का नाम है लिटिल स्टार्स। दोस्तों, इस महान संगीतकार जोड़ी ने हमेशा ही सामाजिक सरोकार को प्रधानता दी है। कई एनजीओज के लिए चैरिटेबल शोज करना, समाज के लिए कुछ करते रहने की एक परंपरा सी इन्होंने चला रखी है। सामाजिक दायित्व को अपना उत्तरदायित्व मानते हुए आनंद जी भाई अथक प्रयास से अपने इस कार्य को कर रहे हैं। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत सुर सागर है और इसमें से एक अंजुली भर के ही इस छोटे से कार्यक्रम में हम पेश कर सकते हैं। तो इनके इस लंबे सफर को आधे घंटे में पूरा करना ये एक असंभव सी बात है। हमारा ये एक छोटा सा प्रयास।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।
1: आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी।

0: ये है।
1: आलेख अभिनय गोयल गोयल का है, वाचन स्वर अभिषेक कटियार।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख है अभिनव गोयल का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। दतिया जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं किसानों से संवाद की, जिसके तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जबकि ये कार्यक्रम नई मंडी परिसर में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आधुनिक कृषि तकनीकों का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा तथा किसानों और मेधावी छात्रों का सम्मान भी किया जाएगा। किसानों के बाद अब बात करते हैं सामाजिक एकता की, जिसके तहत दतिया में संत रविदास जी की संकल्प यात्रा और माटी कलश वंदन यात्रा जारी है। 20 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा गांवों और शहरों से गुजर रही है, जिसका मकसद सामाजिक एकता और समरसता का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी हो रही है। अब बात करते हैं प्रशासन की गतिविधियों पर। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने सेवड़ा स्थित सिविल अस्पताल का बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसव कक्ष, एनआरसी वार्ड और ओपीडी की व्यवस्थाएं देखी। मरीजों को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए गए और सेवड़ा तथा इंदरगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन करने को भी कहा गया है। इसके अलावा कलेक्टर ने सेवड़ा में लोगों की समस्याएं भी सुनी। सेवड़ा में संभागीय आयुक्त मनोज खत्री की अध्यक्षता में जन सुनवाई में 150 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। अधिकारियों को शिकायतों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। युवाओं को स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं दूसरी तरफ बारिश के बीच प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए दतिया में बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है। ये कक्ष 15 अक्टूबर तक 24 घंटे काम करेगा। आपदा से जुड़ी सूचना 0752223510 पर दी जा सकेगी। नंबर एक बार पुनः सुन लें, आपदा से जुड़ी कोई भी सूचना 0752223510 पर दे सकते हैं। अलग अलग शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बारिश के साथ मच्छरों से बचाव भी जरूरी है। विश्व मच्छर दिवस पर बीते दिनों दतिया में जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को मलेरिया और डेंगू से बचाव की जानकारी दी गई। घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की गई। वहीं स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक किया गया। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया की। जिले में सभी पेंशन हितग्राहियों की आधार आधारित ईकेवाईसी पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। बायोमेट्रिक से ईकेवाईसी नहीं होने पर फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये काम 30 अगस्त तक पूरा करने को कहा गया है। वहीं रोजगार के मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर है। इंदरगढ़ के युवा उद्यमी प्रिंस सावला को उद्योग शुरू करने के लिए 80 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया गया है। उन्हें जन कल्याण शिविर में स्वीकृति पत्र दिया गया। प्रिंस उद्योग शुरू कर खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरे युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। पंचायत स्तर पर भी वहीं एक बड़ी बैठक होने वाली है। 25 अगस्त को जिला स्तरीय पंच सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये सम्मेलन जिला पंचायत के नए हॉल में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जिसमें पंच, सरपंच और जनपद पंचायतों के पदाधिकारी शामिल होंगे। अब रुख करते हैं दतिया की सियासत का। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को करीब 6,000 वोटों से हराया। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां जश्न मनाया, वहीं बीजेपी ने नतीजे की समीक्षा की बात कही। अब एक ऐसी पहल जिसकी चर्चा प्रदेश के बाहर भी हुई। दतिया के नशा मुक्ति अभियान की केंद्र सरकार ने तारीफ की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसे दूसरे जिलों के लिए मॉडल बताया है। इस अभियान में जागरूकता के साथ नशे के आदि लोगों के पुनर्वास पर भी जोर दिया गया। वहीं देशभक्ति के रंग बिरंगी तस्वीर भी जिले से देखने को मिली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीते दिनों गांवों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों ने इसमें उत्साह से हिस्सा लिया। वहीं

स्वतंत्रता दिवस समारोह भी दतिया जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब एक जरूरी जानकारी, दतिया में बेहतर काम करने वाले किसानों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में ब्लॉक और जिला स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दतिया से मुंबई की चैत्य भूमि की यात्रा की जाएगी। ये यात्रा 15 से 18 सितंबर तक चलेगी, जिसके लिए 24 अगस्त से 9 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। और आखिर में बच्चों से जुड़ी एक खबर, जिले के लिटिल फ्लावर स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र ने बच्चों को मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। उन्होंने स्क्रीन टाइम को सीमित रखने और तकनीक का सही इस्तेमाल करने की अपील बच्चों से की। दतिया जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे दतिया जिले की चिट्ठी, आलेख अभिनव गोयल का था, वाचन स्वर थे अभिषेक कटियार के। आकाशवाणी का ये भोपाल
1: आए हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के, लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये एनएसडी है और यहाँ पर मुझे 3 साल रहना है
2: जी।
1: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्र संभालो, अब कब वापस जाओगे तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी।
2: हाँ।
1: तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको, तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो और वहाँ पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है सारे उनका स्वागत आगत, तो वहाँ रख के मैं चला गया। तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
2: ओके।
1: और उनका नाम था अनामिका हक्सर।
2: ओ हो घोड़े को जलेबी।

0: था फर्स्ट ईयर के लाइन में, तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
1: ओके।
0: और उनका नाम था अनामिका हक्सर।
1: ओ हो, घोड़े को जलेबी।

0: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है।
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है। एक्चुअली पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है।
2: जी जी,
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा।
0: अरे कसम,
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है।
0: वाह वाह,
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं।
0: जी,
1: तो इसीलिए मैंने मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहाँ जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहाँ कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई अमोन करके गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं। नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे।
0: वाह वाह वाह,
1: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है।
0: क्या बात,
1: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था। वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ही आप योगा कर रहे हो, दो दिन हफ्ते में दो दिन डांस कर रहे हो, दो दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, दो दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए हैं, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे, उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का

0: वर्कशॉप लगा, एक महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की क्या कहते हैं एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया एक महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी, सौभाग्य से एक से बेहतर एक टीचर मिले
1: जी।

0: नहीं, तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया, तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी। तो इस तरीके का माहौल था, आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्यशास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था, तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता है, उस समय एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का, वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा, देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं, फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है, उस समय के जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग, उनकी अपने तरीके का, हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10, हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे, जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमा वडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर, थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारण जी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है,
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला, और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक,
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्टरी कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्टरी क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहाँ मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद
1: जी,
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहाँ रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता

0: प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है। क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो। तो ये सोचना समझना कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो। पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं।
1: ये बहुत अद्भुत बात है कि
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है।
1: वाह वाह,
0: बचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दर देख।

ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: चाहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है। ये भाई

0: जिस समय आप एनएसडी में थे आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है, अभी सीनियर बैच में देखिए आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे। जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साइकिया है, वहाँ आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के, थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी
0: नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म,
1: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज में होन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है, वो हिमानी शिवपुरी है जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहाँ, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राज किरण बम्मा है वो मॉरिशस में है। तो ये सारे भी, अशोक बांटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं। तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे, कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था उड़ीसा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। मीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपनी तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
0: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
1: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
0: जी,
1: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ 3 साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का ये कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज्ड, उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है कहीं भी जाके वो थिएटर करे,

0: और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता, इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो दो या तीन ही बैच के साथ रहा, और सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूँ
1: जी।
0: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रही है। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
1: जी,
0: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के दो वजह है, एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है
1: जी।
0: इसी के ऊपर निर्भर हो आप, कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूँ। आप झुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंझ वारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
1: जी,
0: या गजब तिची अदा मराठी में
1: जी,
0: या मुहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
1: जी,
0: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और दो लाइट है और दो एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह, क्या बात।
0: तो यहाँ से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, 3 मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
1: ये बात
0: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां 2 फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है,
0: उसी में। जयदत्त सिरसागर कॉलेज के वो केशर भाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हमें 3 अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्रायन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने 2 या 3 फ्लड लाइट बनवा दिए।
1: गजब।
0: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा।
0: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने 3 ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो 2 ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
1: अरे बाप रे,
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं है,
1: एक्स्ट्रा थे,
0: एक्स्ट्रा थे ये। मैंने महेश एलकुंज वार जी का यातनागर हिंदी में की,
1: बहुत इंटेंस नाटक
0: है, और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
1: ओके, ये वो पॉइंट,
0: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है, और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब तनवीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर

0: ब्रेक तो नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक के, वो बर्निनारा और थिएटर एंसेंबल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है जिनने ब्रेक को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल ब्रेक्ट, सो दिस टाइम आई वांट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
1: क्या बात,
0: हमने करी है। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है, तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रिज मोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह।
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह। उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर। और दैट वाज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
1: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव,
0: अद्भुत अनुभव। और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के, भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली। और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली ले लिया, आई शुड बी द डायरेक्ट।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा NSD में, जहां आपने अपनी एक दिशा चेंज की।
0: मतलब 2-3 चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था, और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
1: यस।
0: और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक, कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
1: क्या बात है,
0: जो मुझे अंदर से नहीं लगा।
1: जी, यहाँ एक गाना सुनते फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल।
0: बिल्कुल, दिल की बात।

0: साथी सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है वो आप जी रहे थे। उस समय जब आप एनएसजी का कोर्स फिनिश कर रहे थे, केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने 2 चॉइस थे।
0: एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी
0: जी
1: 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में और नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपरेटरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
0: वाह वाह, मतलब दो अलग अलग रास्ते,
1: अलग दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
0: जी,
1: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपरेटरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
0: जी,
1: और वहां पर एनएसडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है, आपने कहा कि वी आर deriving something, तो बोले आपके लिए हम fellowship देना चाह रहे हैं। तो किस बात की, बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले
0: जी,
1: प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
0: अरे गजब,
1: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से, और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहां जाना है आपको, तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
0: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक दिख रही है,
1: एक तरफ इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी या एक या 2 डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है इतने सारे बड़े बड़े एक्टर है, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रहना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली अलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
0: बापरे।
1: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए, और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों, मैंने कहा मैंने सोचा सर क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी राजस्थान उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं?
0: गजब।
1: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड डोमिनेशन है कल्चर में। तो एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के क्या कहते आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
0: जी,
1: वो 35-35 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो,
0: हाँ,

0: के बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, सौ सौ चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है, तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
1: जी,
0: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है।
1: हाँ,
0: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम।
1: अच्छा,
0: दैवम मतलब देव
1: जी,
0: उसका वो मलयाली करप प्रोनंसिएशन है, गलत मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
1: जी जी जी,
0: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम। तैयम का मतलब है देव।
1: देव
0: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है।
1: क्या अनुभूति है, वाह।
0: मतलब वहाँ कोई जो एक्टर है पीछे, उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
1: कि कौन है।
0: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्रे कर रहे हैं और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए। और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गाँव के है, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है। उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है,

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती।
1: इतना बड़ा है वो।
0: इतना ऊंचा है और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दूधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी।

0: प्यूरिफिकेशन होता है, वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है, तो 3 महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूँ, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहाँ होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं, और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम, और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
1: अरे बाप,
0: 32 बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं, ऐसा काम जो करता है, और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहाँ, जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, वो भगवान को देखने आए,
1: आस्था है,
0: आस्था है उसके पीछे, इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्सगिविंग फेस्टिवल है
1: जी।
0: जैसे अमेरिका में थैंक्सगिविंग है, तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए पूरी कम्युनिटी वही करती है, 2-3 कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है, तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
1: जी, जी, जी।
0: अंदर कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था कि ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया
1: जी।
0: वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है ये 4 राज्यों ने, मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है, एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर,
1: एक संगम हो रहा है।
0: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व्ड थिंग
1: जी।
0: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलोसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलोसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सवाल था, लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया, या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं, हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, इस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो

0: समाज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: उजाले उनकी

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। 100 बार कहा आंखों ने यही अफसाना, दिल जाने तमन्ना आपका है दीवाना। श्रोताओं, कार्यक्रम रंग तरंग की शुरुआत कर रहे हैं इस गैर फिल्मी गीत के साथ। आवाजें हैं पीनाज मसानी और भूपेंद्र सिंह की, गीत है नक्श लायलपुरी का, संगीत है जयदेव का, एल्बम का नाम है आई तेरी याद।

अजनबी शहर में अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। कलाम है शायर डॉक्टर राही मासूम रजा का, आवाजें हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आशा भोसले की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं सलीम जेलानी का कलाम। मौसिकी तरतीब दी है गुलाम अली ने। एल्बम का नाम है मीराज-ए-गज़ल।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम रंग तरंग की अगली पेशकश सुनिधि चौहान की आवाज में सुनिए। गीतकार है विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का और एल्बम का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अलीशा चिनॉय की आवाज में नितिन रायकवार का लिखा गैर फिल्मी पॉप गीत सुनिए। इसे सुरों में ढाला है संदीप चौटा ने।

लीजिए सुनिए एक गैर फिल्मी गीत फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीत है ललित सेन का, एल्बम का नाम है याद पिया की आने लगी।

लीजिए सुनिए एक गैर फिल्मी गीत अमिताभ बच्चन और अदनान समी की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अदनान समी। एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है दिलीप वर्मन का, एल्बम का नाम है रात।

सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। राजकुमार रिजवी और इंद्राणी रिजवी की आवाजों में हम आपको सुनवा रहे हैं शायर बशीर बद्र की एक खूबसूरत गजल, संगीत है कमलकांत का।

कार्यक्रम रंग तरंग की अगली और अंतिम पेशकश है तलत अजीज की आवाज में। शायर हैं इब्राहिम अश्क, धुन है फिदा हुसैन की।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलोरा जिले के मुसुनूरू पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 6 विकेट पर 419 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम और आप मिलकर याद करेंगे कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है बैराग।

साथियों, अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

0: ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। नगमा निगार है इंदीवर, तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की। फिल्म का नाम है कुर्बानी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत सुनिए जिसे लिखा है अनजान ने, आवाज है किशोर कुमार की, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

साथियों, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा अगला नगमा है मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, फिल्म का नाम है सफर।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज की ये महफिल सजी है कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी की यादों से। तो आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है एम जी हशमत ने। फिल्म का नाम है कोरा कागज।

एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।

0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कलाकार इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीत रचना है इंदिवर की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की।

0: पीछे दिल ने कहा,
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
0: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
0: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

धर्मात्मा। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और कंचन की आवाजों में। गीत को लिखा है इंदीवर ने, सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मुकेश की आवाज में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है वो पढ़ के सुना देते हैं, जो आपने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट की है। आपने उसे पढ़ा भी है, बहुत सारी बातें आपने हमारे विषय के संदर्भ में लिखी है। पहले आपको इबारत पढ़ के सुना देते हैं। इबारत ये है कि एक सवाल एक जवाब, हर सवाल के जवाब से उठता है एक सवाल और चलता रहता है ये सवालों का सिलसिला। दुनिया जब सवाल करती है तो लगता है क्या जवाब दें, दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे कहा, अगर मैं सवाल पूछूं तो क्या तुम जवाब दोगे? उसने कहा, मैं तुम्ही से पूछती हूं कि कौन हो तुम, कौन हो, ख्वाब हो या हकीकत हो। सवालों का सिलसिला एक जगह आकर ठहर जाता है, पर तभी उसने चांद से पूछ लिया, तुम छुपे हो कहाँ? चांद ने कहा, ये तो कहो कौन हो तुम। सवाल का जवाब मालूम ना हो तो हम निरुत्तर हो जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल का कोई जवाब नहीं है। जवाब तो है, तभी तो हम कहते हैं ये दिल की बाजी है, हम जीत ही लेंगे, खेल को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सत्यता तो ये है कि ये सवाल और ये जवाब एक मरीचिका की तरह हमारे मन में बने रहने चाहिए। तो दिन में 1 बजे यानी कि इस वक्त अभी थोड़ी देर में सवालों का जो जवाब है वो आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। एक हमारी साथी की ये बात की कि मन में छिपे सवालों को न पूछने से असमंजस और गलतफहमियां बढ़ती हैं, जिससे मन अशांत रहता है और रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। खुलकर बात करने से स्पष्टता आती है, मन का बोझ कम होता है और आपसी विश्वास मजबूत होता है। संवाद न करने से, बातों को मन में रखने से दूसरों के इरादों को लेकर गलत राय बन जाती है। सही समय पर सवाल पूछने से भ्रम दूर हो जाते हैं। पारदर्शिता से रिश्तों में अपनापन और नज़दीकियाँ बढ़ती है। छोटे बच्चे कुछ सवाल कौतूहलवश या जिज्ञासा के लिए करते हैं। सही समय पर बच्चों को सही सवाल का जवाब देना चाहिए। ये बहुत मुद्दे की बात हमारे इन साथी ने लिखी है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चों ने अगर कोई सवाल किया तो हमें लगता है बच्चों की बातों का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का जो मन होता है बहुत सारी बातों को उस वक्त सीख रहा होता है। और यही कारण होता है कि उसके मन में सवालों का एक उबाल सा होता है। अगर उन सवालों का सही जवाब ना मिले तो बच्चे किसी गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। इसलिए बच्चों के सवालों का सही जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम गीत सुनने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गीत है ये ससुराल फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। संगीत शंकर जयकिशन का है। गीतकार कौन है ये आप बताइए हमें।

एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। जी हाँ, शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गाना है जो जिसका जवाब आपने हमें दे दिया है। और अब हमारा सवाल ये है आपसे कि क्या आपने किसी से कोई सवाल किया है और आज तक उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया? ऐसा कोई उदाहरण आपके पास हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब ही तो ज़िंदगी की आधी उलझन और आधा सुकून है। सवाल तलाश की आग है और जवाब उस आग पर ठहरा हुआ पानी है। हमें कभी कभी लगता है सवाल यानी अमृत तृष्णा है, मगर वो भी तो एक दृष्टि भ्रम है। सवाल ही तो जिज्ञासा या मनुष्य की चेतना बढ़ाता है। जवाब यानी अनुभूति उस पर गहरी शांति देकर सवाल को जीत लेता है। जीवन का सफर यूं ही चलता रहे, यही रूह का असली बहाव है। और एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं हो सकता। एक गाना भी है, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता मेरे प्यार का हिसाब, इस तरह के एक गाने का इन्होंने जिक्र किया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज की इबारत ने हमारा दिल छू लिया। सवालों के जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, पर हम भी कहते हैं कि दिल की बाजी है, जीत ही लेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका, हम आगे बढ़ रहे हैं। बहू बेगम फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। लता जी की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। संगीत किसका है ये बताइए। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। रोशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना, और सचमुच कुछ सवाल जो होते हैं बड़े लाजवाब होते हैं। ये हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं। जवाब देने वाले के बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब, वक्त। ये वक्त कब राजा को भी रंक बना देता है। सवाल, सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? जवाब, ठोकर और असफलता, जो इंसान को जीवन का असली पाठ पढ़ाती। यानी सवाल भी महत्वपूर्ण होते हैं और जवाब भी। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल पूछने का जवाब तो लोग घुमा फिरा कर दे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता है। मैं कह देती हूँ कि कुछ कुछ सवाल का जवाब वक्त भी देता है, इसलिए वक्त का इंतज़ार करो। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब का यह सिलसिला कभी नहीं थमता। एक सवाल के बाद दूसरा और फिर अनगिनत सवाल खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया सवाल करती है तो असमंजस होता है कि दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे सवालों का जवाब देगी, तो उसने मुझसे ही पूछ लिया कि तुम कौन हो। यानी इन्होंने इबारत में से कुछ जो बातें हैं या कुछ इनके हिसाब से जो गाने सुनवाए जाने हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुपमा फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। आवाज़ हेमंत कुमार की, कैफी आज़मी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। हमने आपसे पूछा कि क्या किसी से आपने कोई सवाल किया और अभी तक आप उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी के साथ हम ये भी पूछना चाहते हैं कि कोई आप व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जिनके जवाब देने का जो अंदाज है वो आपको बड़ा पसंद आता है, और वो जवाब अंदाज जो है वो कैसा है उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताइएगा। चलिए, अनुपमा फिल्म का गाना सुनिए।

धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना। एक हमारे साथी की बात है कि दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, इसी सवाल जवाब में उलझे हुए हैं। कभी किसी को जवाब देने पर कोई उलझन न बन जाए। सवालों के जवाब कई तरह से दिए जा सकते हैं, कभी मौन रहकर आंखों से, हाव भाव से, कभी बगैर बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। उलझे हुए सवालों की परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं, किसी न किसी तरह समय के साथ जवाब मिल जाएगा ये सोचकर सकारात्मकता ले आती है, फिर भी मन उलझा रहता है। एक साथी लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई शक किया जा रहा हो या हमारा इम्तिहान लिया जा रहा हो। तब इंसान अपने को बहुत असहज महसूस करता है। लोग अक्सर अपनी उत्सुकता या नियंत्रण के चाहत में सीमाओं को भूल जाते हैं। हर सवाल का जवाब नहीं होता और कोई ज़रूरी भी नहीं कि हर कोई आपके सवाल के लिए तैयार बैठा हो। और एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब की इस पहेली ने मैं मुझे मेरी बेटी की याद आई। अभी वह 2 साल की है और 15 अगस्त को उसका बर्थडे था। वो मुझसे ऐसे ही सवाल पूछती है कि इसका जवाब नहीं दे पाता हूँ मैं, कभी कभी जवाब दे भी पाता हूँ। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, मेरे पापा रात को सोए और सुबह जागे ही नहीं। ये सवाल हम पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं। शिकारी फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है और अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया ये गाना।

फारूक कैसर का लिखा और जीएस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रही है कि सवालों की धुंध से ही तो जवाबों का सूरज उगता है, लेकिन हर रोशनी अपने पीछे एक नया साया छोड़ जाती है। हम जीवन भर जवाबों की तलाश में भटकते हैं, पर हर मिला हुआ जवाब एक नया प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब समय हमसे पूछता है कि तुमने क्या पाया और क्या खोया, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हिसाब कर्मों का दे या भावनाओं का। मैंने एक दिन बहती नदी से पूछा, तुम थकती क्यों नहीं? उसने पलटकर मुझसे ही पूछ लिया, तुम रुकते क्यों नहीं? पहचान क्या है तुम्हारी, एक बहती हुई लहर या किनारे पर बैठा कोई अजनबी? प्रश्नों का ये भंवर थमता ही नहीं है। एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ सवाल का जवाब मिल जाए, ये हर सवाल का जवाब मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं, कुछ खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे गणित के अध्यापक जो थे वो बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते थे और उत्तर भी बहुत अच्छे से देते हैं, कमज़ोर छात्र छात्राओं को भी गणित बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। एक साथी लिख रहे हैं कि कॉलेज लाइफ में एक लड़की हमें मन को भा गई थी, उसे अंतर्देशीय पत्र भेजकर शादी के लिए लिखा था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। बुढ़ापे में मुलाकात हुई तो मैंने शिकायत करते हुए अंतर्देशीय पत्र का हवाला दिया तो जवाब आया कि हमें पसंद किया था तो चले आते हाथ मांगने, मेरा निर्णय मेरे माता पिता लेंगे, मैं नहीं, आप समय पर आते तो आज मैं आपके साथ होती, ये उन्होंने लिखा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि प्रायः बहुत रोचक तरीके से लोग उत्तर देते हैं, सभी हतप्रभ रह जाते हैं, पूर्ण प्रमाण के साथ उनका उत्तर देने का भाव सदैव संतुष्टि प्रदान करता है, ये इन्होंने इनकी दीदी के बारे में लिखा है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, जहाँ निसार अख्तर के बोल, एन दत्ता का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना आपने सुना, मीनू मुमताज और बलराज साहनी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन दिनों मेरे बचपन के शहर मुंबई का मौसम कैसा है। तो जी हाँ, हम आपको जवाब देना चाहते हैं कि मौसम बड़ा सुहावना है और रोज़ दिन में कम से कम 5, 6, 10 दफ़े बारिश दस्तक देती है और पूरा शहर भिगो करके चली जाती है। ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान पर फिलहाल बादलों का कब्जा है। तो ये मुंबई शहर का मौसम है। अगर आप घूमना चाहें या देखना चाहें इस शहर को, तो मौसम वाकई अच्छा है। अब एक साथी की बात है कि सोचो, सवाल न होते तो दुनिया कितनी खाली खाली होती। सवाल हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं और जवाब हमें आश्वासन से भर देते हैं। सवाल तो एक खाली पन्ना भर है जिस पर हर जवाब वो पन्ना भर देता है। कुछ जवाब हमें जीवन में सबक के रूप में मिलते हैं तो कुछ सवाल अनुत्तरित ही रह जाते हैं। परिपक्वता की पहचान यह नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि यह है कि आप जानते हो कि किस सवाल का जवाब देना जरूरी है और किस सवाल पर चुप रहना जरूरी है। जी हाँ, यही परिपक्वता होती है कि किस सवाल का जवाब दें, क्या जवाब दें और कितना बोलना चाहिए, कितना जवाब देना है, इसी को परिपक्वता कहते हैं। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, एक उत्तर से दूसरा प्रश्न जन्म लेता है। पूरा ब्रह्मांड हमारे ही भीतर की जिज्ञासाओं का एक आईना है। हम

बार उत्तर खोजते हैं, जबकि मूल प्रश्न हमारे भीतर ही जीवित रहता है। अनसुलझे सवाल जीवन की रिक्तता नहीं बल्कि उसकी निरंतरता का प्रमाण है। धन्यवाद देते हैं आपको। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर की आवाज़, भरत व्यास के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

श्री रामचंद्र का संगीतबद्ध किया, ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत गहरी और मन को छू लेने वाली है। सवाल और जवाब के इस भंवर में शब्दों को बहुत खूबसूरती से पुरोया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग के बीच चलने वाले द्वंद्व की विकट स्थिति का सामना हर इंसान को करना पड़ता है, और ये स्थिति तब बनती है जब वो सवालों के जवाब में घिरा होता है। जीवन की इसी उधेड़बुन में निकलता है किसी को जवाब देकर, किसी का सवाल सुनकर, पर सही में उसका सवाल सही है या जवाब उसको खुद ही नहीं मिल पाता है। कुछ सवालों के जवाब तो मिले ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सवालों से भी ज्यादा दर्द देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को याद करें किसी काम के लिए और उसी का फ़ोन आ जाए और वो खुद ही उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो हमने सोचा था, तो ऐसा भी होता है। चलिए एक सवाल हमने आपके लिए भी सोचा है कि क्या आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और उसने उसे सवाल ठीक से समझ में नहीं आया और उसने जवाब कुछ इस तरह का दिया, तो जो सवाल और जवाब का तालमेल जब नहीं बैठता है तो वातावरण में एक हंसी का ठहाका लग जाता है और हम बोलते हैं, अरे हमने तो तुमसे ये बात पूछी थी, तुम तो जवाब कुछ और ही दे रहे हो। तो ऐसे भी कई बार परिस्थितियां

जाती, तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब तीन देवियां फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और साथियों की इसमें आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

देवानंद और सिमी गरेवाल पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि अभी तो बादलों से मैं पूछ रही हूँ कि कब बरसोगे, सिर्फ आसमान का मेकअप मत करो, बरस भी जाओ। और एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों का सिलसिला ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत आदत है, क्योंकि हर सवाल एक दरवाज़ा खोलता है और हर जवाब 10 नए रास्ते दिखाता है। बचपन में ये क्या है से शुरू होकर बड़े होने पर मैं कौन हूँ तक पहुँचते पहुँचते हम सीखते हैं कि रुकना नहीं, जिज्ञासा बनाए रखना ही असली तरक्की है। सवाल हमें विनम्र बनाते हैं और हमें सुनना सिखाते हैं और हमें दूसरों की दुनिया में झांकने की हिम्मत देते हैं। बिना सवालों के बातचीत

बासी हो जाती है। जिस दिन मन से सवाल उठने बंद हो जाते हैं उसी दिन से समझ और जिज्ञासा भी नष्ट होने लगती है। इससे सवाल पूछते रहो, कोई सवाल करे तो उसके उचित जवाब देते चलो और आगे बढ़ते चलो। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में कई सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं, यही अधूरेपन का एहसास और खोज की ये बेचैनी ही हमारी यात्रा का मुख्य हिस्सा बन जाती है। जीवन के अनसुलझे पहलू, कुछ पहेलियां कभी नहीं सुलझती, उत्तर न मिलने पर भी जीना ही अनुभव है। जीवन में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब न तलाशना और अनिश्चितता को स्वीकार करना कई बार मानसिक शांति और आत्मिक सुकून बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका साबित होता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब अब्दुल्ला फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

संजय खान और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि एक बार हमारे चाचा जी ने हमारे छोटे भाई से पूछा कि भैया, यानी ये भैया शब्द उन्होंने पिताजी के बारे में कहा था, कि भैया के विवाह में आपने डांस किया था, तो उसने अपने बड़े भैया के विवाह के संदर्भ में हाँ कहा और सब लोग हंस पड़े और इस तरह से एक हंसी का माहौल बन गया। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ और सोच रहे होते हैं और कोई सवाल करता है तो हम बिना उसकी बात समझे जवाब दे देते हैं, बात बाद में समझ में आता है कि अरे मैंने तो ये गलत जवाब दिया, फिर सॉरी बोलकर सही जवाब दे देते हैं और सबके जवाब भी कितने अलग होते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिसाब के सवालों से डर लगता था, कभी गार्जियन कुछ कड़क की पूछे तो डर लगा, पर सबसे ज़्यादा डर लगता था जब शादी के पहले लड़कियों से लोग मिलने जाते और तरह तरह के उटपटांग सवाल एक पर एक दाग देते हैं, तो ये बड़ा अजीब लगता है। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं, जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब। वक्त, ये वक्त का राजा होता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम आपको नवरंग फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ें, भरत व्यास के बोल, सी रामचंद्र का संगीत, महीपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना है।

तू छुपी है कहाँ, महिपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल जवाब ही संसार नहीं होते, पशु और पंछी जो कि बेजुबान होते हैं वो भी संसार में होते हैं। इनका कहने का मतलब ये कि बिना सवाल और बिना जवाब के भी संसार चलता रहता है। अब देखिए भाई, पशु और पंछियों की जहाँ तक बात है तो उनमें भी हो सकता है कई तरह के सवाल इशारों से होते हों जो हमें समझ में ना आते हो, ये भी हो सकता है, ये एक सवाल है, हो सकता है ऐसा। चलिए, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नए देश, नया परिवेश, नए दृश्य, अलग अलग रहन सहन पूछना ही पड़ता है। मैं बर्लिन में हूँ और बहुत कुछ नया देख रही हूँ और सवाल भी करती रहती हूँ कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ है, इस तरह के सवाल मन में आते हैं और जवाब मिलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों और जवाबों की मरीचिका जीवन में अंतहीन खोज, असंतोष और भ्रम का एहसास कराती है। जिस तरह रेगिस्तान में पानी की चमक देखकर इंसान भागता है पर वहाँ कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जीवन में एक जवाब मिलते ही एक सवाल खड़े हो जाते हैं और जवाब अंतिम सत्य नहीं है मगर असल में एक नया सवाल होता है। जवाबों की खोज की तृष्णा है जो नए सवालों की जनक होती है। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आशिक फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। मुख्य कलाकार कौन है फिल्म में ये बताइए।

उसके बारे में लिखा है कि इस गाने में शहनाई और बांसुरी बजाई संगीतकार रामलाल ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया सी रामचंद्र ने। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होता ही है, चाहे मौन ही क्यों ना हो, अनुत्तर रहकर हम परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। इंसान चाहे कि कोई उससे बात करे या उसके प्रश्न का उत्तर दे, क्योंकि लोग बात करना चाहते हैं पर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला और अंतिम गाना शोला और शबनम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से, कैफी आज़मी के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

शोला और शबनम, इस फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत खय्याम का। एक साथी के इस बात के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। लिखती हैं कि पक्षी भी अपनी भाषा में सवाल पूछते हैं। जी मेरे साथ हुआ था, बुलबुल पक्षी जो रोज़ दाना डालती थी, एक दिन व्यस्त थी काम में तो वो मेरे आसपास बार बार मंडरा रहा था और अलग सी उग्र सी बोली में मानो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि आज अपन का दाना किधर है। तो देखिए पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। चलिए धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, प्यारी प्यारी बातों के लिए। और गीतों को आपने ध्यान से सुना, उसके बारे में लिखा, सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

दो बजे हैं। लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म का एक बहुत ही अच्छा गाना, जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, नितिन मुकेश और साथियों की। संतोष आनंद ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते ही ये गीत।

फिल्म संगीत में आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं पूनम फिल्म का एक गाना। आवाजें हैं चंद्रानी मुखर्जी और मोहम्मद रफी की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और अन्नू मलिक का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें 2:30 पर आप सुन सकते हैं आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 होने का है और ये समय होता है इस घंटे की खास खबरों का, तो कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 स्मारिका का विमोचन किया। अपने संबोधन में श्री यादव ने सभी से मिलकर देश हित में काम करने का आह्वान किया।
1: प्रदेश के अंदर जो हमने नदी जो अभियान का नया प्रयोग किया है, वाकई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिनने डेडिकेटेड एरिया बनाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो लेकिन इनकी जल रचना का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए। तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्यप्रदेश ने लिया है आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ हमने अपने संसाधनों की

0: तो एक नदी में बाढ़ आती है दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी आए इकट्ठा कर लो, बाद में बंटवारा कर दे, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच। और भाई हमने तो आज समय कैसा आ गया मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा।
1: मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अटल बिहारी वाजपेयी से शासन और नीति विश्लेषण संस्थान तथा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय संस्थानों ने प्रदेश के विकास में अपने योगदान और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में कथित नियुक्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहनन की पीठ ने हरिशरण देवगन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की गई है। झारखंड हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार के जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा चुका है और राज्य सरकार को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायसेन जिले के सांची में आधुनिक सुविधाओं से लैस उपचार उप डाकघर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। शाम में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी वर्चुअली शामिल होंगे। सांची की ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए डाकघर को आधुनिक और नागरिक सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया गया है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। शाम को महाकाल की चौथी सवारी निकलेगी, जिसमें बाबा चार स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। रायसेन के भोजपुर में भोजेश्वर महादेव का करीब 6 क्विंटल फूलों से महाकाल स्वरूप में श्रृंगार किया गया। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में 15,000 रुद्राक्ष से विशेष श्रृंगार होगा। ओंकारेश्वर में बाबा की सवारी के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ की रथ से सवारी निकलेगी। बारिश के बावजूद पूरे प्रदेश के शिवालयों में भक्तों में उत्साह बना हुआ है। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में डिंडौरी बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। विदिशा, रायसेन, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, मंडला, कटनी, रीवा, सीधी और छतरपुर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सतना में आज समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों और विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। झाबुआ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उल्लास एक अभिनव प्रयोग के अंतर्गत न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और न्यायालयीन कर्मचारीगण की आभा आईडी बनाने की प्रक्रिया आयोजित की गई। शिवपुरी में जिला प्रशासन और किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कल शहर की पुरानी अनाज मंडी परिसर में साप्ताहिक जैविक और प्राकृतिक हाट बाजार का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के

0: संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Special Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed desertification, integrated nutrient and pest management and farm mechanization assistance. And field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने ये समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
6: मुख्यमंत्री रहते हुए देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी

0: निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
2: PMFME की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट-टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीरा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे newzone.air और हमारी वेबसाइट www.newzone.air.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुस जलडम्र मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुस जलडमरो मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुस जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे newzone.air ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @airnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी

0: बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गीतकार हैं हसरत जयपुरी। फिल्म का नाम है जिंदगी।

0: नाचे ओए छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे
1: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में गीतकार है हसरत जयपुरी संगीत है सचिन देव बर्मन का फिल्म का नाम है जिद्दी

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी। मिलो जो अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार है मदन मोहन, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे लिखा है फारूक कैसर ने, धुन है जीएस कोहली की, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है शिकारी।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अगले गीत में बोल है राजेंद्र कृष्ण के तर्ज है रवि की फिल्म का नाम है शहनाई

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत कौर की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं खय्याम, फिल्म का नाम है शगुन।

लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना चित्रगुप्त की, फिल्म का नाम है मेरा कसूर क्या है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अनवर, संगीत है उषा खन्ना का, फिल्म का नाम है शबनम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों सखाओं सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा
1: और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। चंचल जी कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ और इस मंच पर बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं और ये मुलाकात भी बहुत अच्छी है।
1: बिल्कुल, मुलाकातें अच्छी होती है तो अच्छा लगता है कि, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है, कुछ मुश्किल हालात होते हैं और कई बार बोलने का मन भी नहीं करता है, लेकिन कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। एक जो जीवन एक मंच की तरह होता है, रंगमंच की तरह होता है, तो यहाँ खेल खेलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है, तो मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लेकिन उससे डरे नहीं, हारे नहीं, और अपना काम जो है अपने मन को स्थिर रखते हुए करते रहना पड़ता है।
0: कई बार मुश्किल वक्त में हम लगता है कि रुक जाएं या गिव अप कर देते हैं ना, हार मान लेते हैं, तो वहीं वो थम जाता है। और पानी भी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है, जहां वो रुकता है वहां उसमें काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमें हमारे मन के अंदर भी वो नकारात्मकता जो है वो घर करने लगती है। इसे डरना नहीं है और एक समय आने के बाद हमें लगेगा कि ये जो मुश्किल वक्त आया था ये हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है।
1: बिल्कुल, थोड़े से उपाय होते हैं जो हम कर लें तो ये जो मुश्किल समय होता है आसान हो जाता है। अब वो उपाय क्या है, बातें क्या है, वो तो हम बाद में जब विषय पर बात करेंगे तभी आपको बताएंगे, लेकिन
0: और
1: फिलहाल
0: हमारे सुनने वाले भी तो अपने अनुभव बताएंगे, अपनी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स उनके आएंगे।
1: हाँ बिल्कुल, तो आज जो विषय है उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो कथा सुधा की बात करते हैं। कहानी है छः आने का टिकट,
0: इसका पहला भाग।
1: जी हाँ, आज सुनेंगे आप। देखो, अब इस जमाने में अगर हम छः आने के टिकट की बात करें तो क्या हमें कुछ सत्यता लगती है इसमें?
0: नहीं लगती है।
1: हाँ
0: और आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 15 से 16 साल होगी, उनको तो आने के बारे में पता भी नहीं होगा कि आना कैसा हुआ करता था। लेकिन इन कहानियों का अस्तित्व, इनका जो मर्म है, इन्हें अगर हम समझेंगे ना, तो इनकी सीख कहीं भी कोई पुरानी नहीं है। सिर्फ एक आने का उनको समझ नहीं आएगा कि आना क्या होता है। तो हर मुद्रा होती है एक तरह की,
1: जी
0: रुपया पैसा जो भी है, ये आना भी पहले चला करते, रत्ती आना दो आना, ये सब वही मुद्राएं हैं।
1: बिल्कुल, और दूसरा जो विषय है, मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये विषय है जिस पर हमने अभी थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा अभी कर ली है।
0: और हम करते हैं सोमवार के दिन प्रादेशिक व्यंजनों की बात। तो अगस्त के महीने में जिस प्रदेश के व्यंजन की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी सखियां हमसे जुड़ रही हैं इनको लेकर, ये है पश्चिम बंगाल की, जो भी बहुत चटपटी, मीठी, खट्टी और बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि चर्चित रेसिपीज हैं, उनकी बात।
1: तो आज लाबरा और रसगुल्ला, ये जो दो मिठाइयां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी कि लाबरा जो है वो मिठाई नहीं है, रसगुल्ला तो मीठी चीज है, लेकिन लाबरा एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, यानी कि सब्जियों का मिश्रण है।
1: अच्छा,
0: तो हर जगह सब्जियां बनाई जाती हैं और मिश्रित सब्जी का जो रूप है वहां उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बंगाल में जब भी मिश्रित सब्जी बनाई जाती है तो उसका नाम है लाबरा। और ये कुछ खास अवसर होते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में जो पूजा होती है, दुर्गा पूजा, उस समय और ऐसे खास मौकों पर ये बनाई जाती है। तो हमारी जो सखियां इसके बारे में जानती हैं, इसकी रेसिपी के बारे में जानती हैं, इसके बारे में कुछ भी सुना है, और रसगुल्ला भले वो बंगाल का हो, लेकिन सुनते ही पानी तो सबके मुंह में आ जाता है।
1: बड़ा मुलायम मुलायम सा और रुई के जैसा लगता है और स्पॉन्जी होता है, और जब उसको हाथ से निचोड़ो तो बहुत सारा रस उसमें से टपकता है। अब जिसको जितना मीठा पसंद है उतना रस में डूबा हुआ रसगुल्ला वो खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर कम मीठा है तो थोड़ा ज्यादा निचोड़ दीजिए उसे और खा लीजिए।
0: मिठास लेनी है आपको, लगता है कि भाई इन चीजों से कहीं ना कहीं सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, तो संगीत की मिठास अपने जीवन में घोलिए।
1: बिल्कुल।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और गीत में जो बात थी कि आए हैं दिन सावन के,
1: जी
0: तो सचमुच सावन का महीना चल रहा है और ये दिन बड़े सुहावने लगते हैं। रिमझिम
1: बिल्कुल
0: बारिश अच्छी लगती है और उसके बाद जो हरियाली छा जाती है उसका तो कहना ही क्या। और कुछ बातें या कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, उससे भी तो हरियाली छाती है। हमारे कार्यक्रम में देख लो या हमारे इस स्टूडियो में, है ना।
1: जी
0: तो आज कथा सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी छह आने का टिकट, इसका पहला भाग, आइए सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: छह आने का टिकट। पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है। इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल्लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी छह आने का टिकट। आइए सुने इस कहानी का पहला भाग।
4: उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां यह बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड तीन रंगों में छपाया था और हरेक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे, चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूंछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी, आंखें बिल्ली की तरह, बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को ये सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा, शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा,
5: क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं?
4: बहुत विनयपूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हां।
5: और संपादक किशोर जी कब आते हैं?
4: कोई समय तो उनका ठीक नहीं है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं?
5: जी जी जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है, मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहाँ हैं?
4: और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मर्माहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहां से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहां नहीं हैं। एक हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है।
5: अरे वो यहां नहीं है क्या?
4: नहीं नहीं।
5: ओहो, खैर दफ्तर तो है, यही रहूंगा एक हफ्ता, कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा।
4: ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकार

0: था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
1: अच्छा।
0: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
1: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। हाँ सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए और एक बात का ध्यान
0: रखिए। जी जी जी जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता
1: जी।
0: चोरों और बदमाशों का वहां जमघट रहता है।
1: अच्छा।
0: और मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा।
1: क्या?
0: उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा।
1: मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है, इसे कैसे पता चला? खैर, 4 दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है।
0: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
1: जी?
0: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
1: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूँ और आसानी से ना नहीं कह सकता हूँ। लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा,
0: किशोर जी।
1: हाँ बोलिए।
0: आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं।
1: बड़ी प्रसन्नता की बात है।
0: जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए।
1: वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे।
0: वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा।
1: ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा।
0: किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना।
1: राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके आने पर चला जाऊंगा।
1: और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला, बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा यह दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
0: किशोर जी
1: जी,
0: आज तो आपकी छुट्टी है।
1: हाँ।

0: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
1: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भिखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, हम्म, और 2 6 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
0: नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
1: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
0: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौट कर भोजन करूंगा।
1: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।
2: छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

अभी आप सुन रहे थे कहानी छह आने की टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली।
2: तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती है। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती
1: है। ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद या संघर्ष चलता है सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें

0: रखना ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।
1: लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर ये भी तो एक सवाल है। तो खैर लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं जो हमारे हितैषी हैं उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है किसी की मदद हम मांग सकते हैं बशर्ते कोई हमारी मदद करे है ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं उनसे भी अपने मुश्किल से उबरने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए और हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको उसका कोई हल निकाले।
0: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की नानुकुर ना करें कोई नखरा ना करें या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए जरूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं डरे नहीं उससे घबराए नहीं और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें गिरे और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया।
1: ये सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं उनसे संघर्ष करते हैं तो वही चीजें हमारी मजबूती बन जाती है। और जब भी लगे कि मुश्किल ज्यादा भारी हो रही है तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता है। तो मुश्किलों का क्या है ये तो रोज आती है या जीवन में कई बार आती है पर इनसे घबराना नहीं है क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने छोटे
0: हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा।
1: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। जब आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
0: और कई बार समस्या भले छोटी सी हो लेकिन हाय हम क्या करें ये हो गया वो हो गया ये कह कह कर ही हम उस समस्या को मुश्किल
1: और बड़ा बना लेते हैं
0: बना
1: और
0: हैं।
1: बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस ओर हमें कदम आगे बढ़ाना होगा।
0: तो हम मुश्किल या समस्या की बात करने की बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे हल निकालने की बात करेंगे ना तो वो चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और मुश्किलें जो आती हैं वो हालातों से सबक लेने के लिए एक सिग्नल की तरह होती हैं कोई सजा नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ सीखना है हमारे आसपास जो भी सिस्टम या जो चीजें चल रही हैं उन्हें किस तरह से बदलने की जरूरत है। अगर हर बार रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता कैसे है ये भी हमें ढूंढना होगा और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है।
1: बिल्कुल। और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता इसलिए थोड़ा रुक जाओ गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं थोड़ी सी मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं हौसला पस्त हो जाता है और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे। इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता
0: है। कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए एक्सरसाइज कीजिए थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हैं आपके चाहे वो पड़ोसी हैं परिवारजन हैं दोस्त हैं उनसे अपने दिल की बात कहिए और ये चीज़ें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं मैं हूं ना साथ में
1: बिल्कुल
0: मैं हूं ना तो ये जो मैं हूं ना जो छोटा सा शब्द है ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
1: बिल्कुल
0: है।
1: हमें संबल देता है और हमें लगता है कि हम अकेले नहीं है अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा। और घबराने की बजाय थोड़े से जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाए और बुझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये

0: मुझे क्या सिखा रहा है? हर मुश्किल के बाद दो चीज़ें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है, लेकिन हुनर जो होता है वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है। और इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे, लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम एक दिन पहले ला के रख देते हैं, दालें ला के रख देते हैं, आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं, सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारियां अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीज़ों का असर कम होगा।
1: बिल्कुल, कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार, इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं।

0: खता।
1: तो भाई खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने हैं।
2: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रही हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, यह पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है, निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
1: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं, जो सफल व्यक्ति हैं,
2: बिल्कुल महान व्यक्ति जो हुए हैं, उनके
1: उन्होंने सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया तभी वो सफल हो सके।
2: हाँ, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझ कर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
1: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराए नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे ना हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
2: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, राहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल के जिद पर अड़े रहना, तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है, पर यह परखती हैं कि अपना इरादा, यह हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना। और मुश्किल समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो इस तरह की बातें कहकर हमारी हौसला अफजाई करे।
1: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बची नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
2: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। जैसा कि हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे, तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें, सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक को शेलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं, बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन

0: डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़क कर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और एक चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसे।
1: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है।

0: तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक जिन व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उसके उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो
1: जी
0: पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता है। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी नरम और रस से भरपूर होता है।

0: पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है, ये
1: हाँ
0: बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की, और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है तो
1: जरा
0: भी
1: ठहरो, लेकिन ठहरने का समय नहीं है
0: नहीं
1: ना।
0: है, जाना है लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी वही बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आम तौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धूरत जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
2: मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है

0: और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ, तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है
1: क्या
0: ये माध्यम से।
1: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं, वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल इसमें ये चीजें डाल दो, ये कितना खतरनाक लग रहा है, यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
0: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
1: लेकिन बतौर विशेषज्ञ आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
0: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20,000 से 22,000 है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1,00,000 के ऊपर है तो इस पर से आप समझ सकते
1: हैं।
0: यस
1: जी जी,
0: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को, तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरियाटिक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा। जमाल गोटा एक इरिटेंट है, इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते,
0: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते।
1: तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं,
0: हाँ,
1: पर थोड़ा संभाल के,
0: बिल्कुल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा
1: बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं।
0: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
1: जी,
0: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
1: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा।
0: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
1: जी। आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जड़ा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहाँ जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा।
0: बिल्कुल
1: तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए, मैं कर दूं?
0: आप कर दीजिए
1: हम सब उस्ताद हैं, फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं।
0: हाँ।
1: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं?

0: अच्छा आप बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग। आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है। मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है। और जब बाल में टक्कल बालनेस दिखाई देता है तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है।
0: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है
1: तो बालनेस कभी दिखाई देता है। 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है।
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई।
1: बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है।
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली

0: हेयर फॉल होता है तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत मैं बताती हूँ तो रफली 30, 40, 50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है, मैं नहीं मानती हूँ,
0: जी
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके तो महीने के कितने हो गए, काफी हो गए,
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी
1: 3 महीने के कितने हो गए, तो
0: जी
1: 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
0: चालीस
1: लगा
0: पचास
1: 40, 50 लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अबनॉर्मल समझना चाहिए, आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं।
0: और पुरुषों में
1: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता है क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं, पर
0: जी
1: जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे, कुछ दिन तक आ रहे हैं और महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एबनॉर्मल है,
0: ठीक
1: इसको
0: बात
1: नॉर्मल नहीं कहा जाता है।
0: जी
1: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपके हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वेरी बहुत कॉमन चीज है, ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं,
0: ये जो
1: जिसको
0: आपने
1: हम,
0: टर्म यूज की
1: हाँ
0: ये क्या है?
1: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखा जाता है,
0: ब्लू कलर की रोशनी में।
1: नहीं ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें, तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं, उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है, दैट
0: जी
1: इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो ये जो इनिशियल साइन होता है बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू, सिंपल चीज है, एक अपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं,
0: बिल्कुल
1: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है, तो वो आहिस्ता जो आना है वो प्रमाण 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है,
0: जी बिल्कुल
1: जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन,
0: ये समझने की बात
1: ये
0: है।
1: समझने की बात है, तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है, और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ
1: नहीं,
0: के।
1: डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है, ट्राइकोलॉजिस्ट
0: ओके
1: एक डिग्री नहीं है।
0: जी
1: हाँ,
0: जी
1: अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं
0: ओके
1: तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है, तो ट्राइकोलॉजिस्ट आप बोलोगे प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर, यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं।
0: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं हाँ। डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीज़ें, बाल्डनेस कॉमन चीज़ें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे
0: हैं। और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं कि किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में
0: जी
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम।

0: होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस
1: और उसका
0: चांसेस
1: असर
0: ज्यादा।
1: बालों पर जाता है
0: बिल्कुल
1: जी। महिलाओं की बात आपने की, तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में
0: बिल्कुल
1: निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं,
0: या
1: ये
0: ये
1: क्या
0: ही
1: मामला है ये
0: हाँ।
1: बताएं।
0: महिलाओं में PCOD नाम सुना है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है। तो यहाँ हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी PCOD हो जाता है। ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
1: जी
0: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है। पहले के ज़माने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे,
1: करेक्ट
0: रिक्शा के पैसे बचाते थे तो
1: बढ़िया
0: वो
1: बात
0: हमारा
1: बोली।
0: चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो PCOD और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है, और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि PCOD है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा,
1: जी जी बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
1: नहीं
0: 40 साल के, 50 साल के लोगों को होता था। अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया
1: जी, ये
0: कि
1: बहुत आज के जमाने की चीज है।
0: यस। और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितने बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
1: जी
0: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
1: एक तरह से आप जो हैं वो खान पान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई
0: यस
1: अगर खान पान ठीक नहीं किया तो
0: नहीं,
1: इसका
0: सभी
1: असर।
0: चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शीका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने
1: यस,
0: लगती
1: दोनों
0: हैं।
1: चीजें अलग अलग है। एक तो
0: जी
1: मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारा एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहां हेयर फॉल होता है।
0: उसको कैसे टाला जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन्स होते हैं अलग टाइप के,
0: ओके
1: मतलब वो मेडिसिन अलग है। आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टू हार्मोन थेरेपी। आप इस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं बोलो, खाना फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा।
0: ओके
1: तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है। पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं, और वहाँ उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है, जब क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है
0: इस उम्र में तो सबका होता,
1: सबका,
0: हमारा भी हुआ
1: हाँ
0: था।
1: बिल्कुल यही डायलॉग होता
0: जी, तो इसको कैजुअली नहीं
1: हाँ
0: लेना।
1: इसको कैजुअली नहीं लेना है, आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है, वही जो मैंने पहले बताया
0: एक
1: हेयर
0: बार फिर
1: शेडिंग।
0: बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए, महिलाओं में 30 से 40 बाल।
1: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30 40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
0: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी, रीठा, शीका, काई, चाय पत्ती, जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना
1: नहीं,
0: घरों में?
1: मेहंदी, रीठा, शिकाई ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, प्याज का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं।
0: उल्टा हो जाएगा।
1: सी इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के, और उनको इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लासिबो वजह से भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बोतल दी और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे, और आप मुझ में बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
0: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा।
1: यस, सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
0: बिल्कुल
1: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया, या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, ऑल इज वेल।
0: जी
1: यू विल इम्प्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
0: ओके, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगेगी।
1: यस
0: मुझे लगता है यहां पर एक गाने की बारी है।
2: न झटको जुल्फ से पा

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के, बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे
1: हैं। तो वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद,
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
0: यस,
1: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन है, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओहो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे?
1: यस, आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
0: जी जी जी,
1: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
0: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
1: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं

ये गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत। और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि दो महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा

0: अच्छा, कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है
0: जी,
1: या
0: और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है। स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है, कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी कारण से अच्छी नहीं है ना। इवन पैसिव स्मोकिंग, कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं, तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर।
0: बिल्कुल, अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है?
1: बहुत बड़ा भ्रम है
0: जी।
1: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है
0: जी,
1: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है? हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था, जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है। क्यों?
0: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है,
1: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं
0: जी,
1: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है, एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है।
0: तो ये समझने की जरूरत है।
1: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है।
0: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: यस,
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

श्रोताओं, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह,

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा साया साथ होगा।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
5: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। छाया गीत में आज ऐसे गाने हैं जिनके दो संस्करण हैं, एक मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन। सुनने के आनंद के लिए हमने किसी दिलचस्प मोड़ पर इन गानों को आपस में जोड़ दिया है। कुछ अल्फाज कहना कितना मुश्किल होता है, जब कहना इतना मुश्किल है तो लिखना और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना। फिर कैसे कहें अपने दिल की बात, कैसे कहें जिसे कहने के लिए बेकरार है दिल, लरसते हैं होंठ, कांपता है बदन और मिलते नहीं अल्फाज अपनी बात कहने के लिए।

कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। खुशी की चमक, दुख की झलक, सब कुछ आंखों में तैर जाता है। आंखों में समाया है हमारे दुखों का नमक और खुशियों की चहक। किसी की आंखें रोशनी हैं, उम्मीद हैं, इन आंखों से रोशन है हमारा संसार। आंखें आंखों से करती हैं बातें, आंखों की इस भाषा को कम ही लोग जान पाते हैं।

0: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी,
0: हम अभी हाजिर हुए।

जिंदगी आसान भी है और दुश्वार भी। जिंदगी कितना कुछ सिखाती है हमें। सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी। यूं लगता है कि सामने है मंजिल और पल भर में मंजिल कोसों दूर होती है। जिंदगी कभी एक कविता है, कभी एक अफसाना और कभी एक महागाथा। चलो जिंदगी की उंगली पकड़ें और बातें करें इससे, कह दें इससे अपने सारे गिले शिकवे।

बारिश कुदरत की एक कविता है, बारिश संगीत है प्रकृति का, बारिश एक वरदान है, ये जज्बात जगाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। ऐसी बारिश में घर के अंदर बंद रहना एक गलती है। बारिश तो बाहर निकलने के लिए होती है, सराबोर होने के लिए होती है, गाना गाने के लिए होती है, जिंदगी जीने के लिए होती है बारिश।

0: छाया गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष और एक महिला संस्करण। सुनने के आनंद के लिए हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम, फिल्म जंगली।
1: एहसान तेरा
2: दाम छुपर।
0: फिल्म चिराग।
1: तेरी आँखों के सिवा
2: दुनिया में रखा क्या।
0: फिल्म मासूम।
1: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।
2: हैरान हूँ मैं।
0: और फिल्म मंजिल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अभी शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, तो आइए उठाते हैं आनंद कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
6: सो योर प्लेस और माइन?
7: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
6: कॉन्डम? लेकिन हम तो
7: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
6: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा

0: इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
1: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
2: GST काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का शेड्यूल केंद्र है, शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
1: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
1: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
1: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडावा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
2: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द

0: हिंदी के हो गए हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
0: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ आपको टाइप करना है।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी, तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक

0: साथ जुड़ी हुई थी,
1: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी, मतलब।
0: नव्या अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
2: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
1: रुको, मैं बताती हूँ।
0: तुम बताओ।
1: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
0: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
3: टैथिस महासागर।
0: वाह,
1: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
2: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
2: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर, ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी

0: कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
3: अच्छा, तो ये बात है।
1: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
1: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
1: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
1: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनिंकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: जानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुलफाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
6: वाओ, वंडरफुल।
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
3: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
5: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
1: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
2: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
3: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
2: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
4: ग्रेट, मार्वेलस।
1: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
4: वंडरफुल।
8: हाँ, हम सहमत हैं।
2: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
7: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता।

0: भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
1: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
2: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
1: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
2: कहीं ऐसा ना हो कि
1: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास, भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। शाम के 6:30 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम लोक संगीत का।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है प्रादेशिक समाचार दर्शन का, आकाशवाणी भोपाल से।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राणा शाहिद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है खंडवा जिले से, जहां मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रशासन सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। पेश है खंडवा से हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे की यह रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिला स्तरीय अधिकारी नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों का निराकरण कर रहे हैं। अभियान के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह भी गांधवा के शिविर में शामिल होकर जन समस्याओं के समाधान की समीक्षा कर चुके हैं। शिविरों में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों को मौके पर ही राहत मिल रही है। अब अभियान का अगला चरण 27 अगस्त को खंडवा शहर में आयोजित होगा। नगर निगम के जोन क्रमांक 1 और 2 में लगने वाले शिविर में सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और लोक सेवा गारंटी से जुड़े आवेदनों का निराकरण भी किया जाएगा। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जानकारी और उद्यम संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होगा। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान सुशासन की उस सोच को साकार कर रहा है, जिससे मंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
0: हमारी दूसरी खबर है झाबुआ से, जहां सिकल सेल रोग से प्रभावित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास से जोड़ने की दिशा में प्रोजेक्ट संपूर्ण सिकल केयर की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्क्रीनिंग से लेकर उपचार, नियमित अनुश्रवण और पुनर्वास तक समग्र व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं झाबुआ से हमारे संवाददाता हरीश यादव।
2: झाबुआ जिले में सिकल सेल रोग से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को शत प्रतिशत पहचान, नियमित उपचार और सामाजिक आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झाबुआ कलेक्टर योगेश तुकाराम बरसठ के निर्देशन में संपूर्ण प्रोजेक्ट सिकल केयर की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से सिकल सेल की नियमित स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी व्यक्ति के सिकल सेल से प्रभावित पाए जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को भी जांच कर आवश्यक सेवाओं से जोड़ा जाएगा। सभी गर्भवती महिलाओं और पात्र हितग्राहियों की सिकल सेल जांच पर विशेष जोर दिया जाएगा। चिन्हित मरीजों की आवश्यकता अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही हाइड्रोक्सिल यूरिया और फॉलिक एसिड जैसी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। मरीजों के स्वास्थ्य और उपचार की प्रगति पर नियमित नजर रखने के लिए प्रोसेस कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके तहत सिकल सेल मित्र के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने की पहल की गई है। इच्छुक लोग इच्छा से सिकल सेल मित्र बनकर मरीजों और उनके परिवारों को आवश्यक सहयोग दिलाने में मदद कर सकेंगे। प्रोजेक्ट संपूर्ण सिकल केयर के माध्यम से सिकल सेल रोगियों को केवल उपचार तक ही सीमित न रखते हुए नियमित स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सहयोग और आर्थिक पुनर्वास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश यादव।
0: हमारी अगली खबर है नर्मदापुरम से। जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रशासन जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी।

0: मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत नर्मदापुरम जिले में प्रशासन का जोर अब जनता तक पहुंचकर समस्याओं के समाधान पर है। हर शुक्रवार जनसंवाद और समाधान शिविरों में नागरिकों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। अलग अलग विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर शिकायतों का निराकरण करने के साथ शासन की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दे रहे हैं। अभियान के तहत अधिकारी गाँव में पहुंचकर स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और दूसरी शासकीय संस्थाओं की व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं। जिले की सिवनीमालवा के हतनापुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कृषि से जुड़ी व्यवस्थाओं की पड़ताल की गई। वहीं माखन नगर क्षेत्र में विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई और भविष्य की तैयारियों की जानकारी ली गई। इस दौरान ग्रामीणों की पेंशन, क्षतिग्रस्त मकान और आर्थिक सहायता से जुड़ी समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इधर अभियान में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर है। पीएम किसान, आयुष्मान पेंशन, लाडली लक्ष्मी और स्वरोजगार जैसी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी।
1: हमारी अगली खबर है इंदौर से, जहां बीते दिनों पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया, जिसके तहत जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विस्तार से बता रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता मनिंद्र कुमार दुबे।
2: इंदौर पुलिस ने जिले में नशे के दुष्प्रभाव से आमजन को जागरूक करने के लिए 15 दिवसीय नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया। इस अभियान के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और बस्तियों में सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों, फिल्म और टीवी जगत की हस्तियों को भी जोड़ा गया। पुलिस ने शहर के अलग अलग विद्यालयों में अभियान के संदेश एवं नशे के प्रभाव की जानकारी देने वाली विशेष शैक्षणिक कॉपियों का वितरण भी किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के बारे में चर्चा करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त निधि सक्सेना ने आकाशवाणी को बताया कि
3: मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जो 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में चलाया गया था, इसमें इंदौर पुलिस के द्वारा दिन प्रतिदिन नए कार्यक्रम चलाए गए थे। दिन प्रतिदिन हमने स्कूल्स और कॉलेज में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया। स्कूल्स के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया।
2: नशे के विरुद्ध इस अभियान में पुलिस विभाग की विशेष उपलब्धि जन सहयोग से मानव श्रृंखला का विश्व रिकॉर्ड रही। इसके तहत शहर में 8,534 नागरिकों ने शहर वासियों से नशा न करने की अपील करते हुए एक मानव श्रृंखला बनाई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम चलते हैं हरदा जिले की तरफ, जहां कलेक्टर ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा कर निर्देश दिए कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन और साफ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हरदा से हमारे संवाददाता लोमेश कुमार गौर।
4: हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बीते दिनों प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में सभी स्कूलों के मध्याह्न भोजन बनाने वाले कक्षों में एग्जॉस्ट फैन और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन देने, साफ पेयजल उपलब्ध कराने और सभी स्कूलों में पानी जांच किट रखने, समय समय पर सफाई करने, तय मेन्यू के अनुसार भोजन वितरण और खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण की नियमित जाँच करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर।
1: हमारी अगली खबर है जबलपुर से, जहां मदन महल की ऐतिहासिक पहाड़ी पर रानी दुर्गावती स्मारक और संग्रहालय अब आकार लेने लगा है। करीब 24 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह परिसर शहर के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल होगा। यहां रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। अधिक जानकारी दे रही हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी।
5: संस्कारधानी जबलपुर की मदन महल पहाड़ी पर रानी दुर्गावती के जीवन और गोंडवाना की गौरवशाली विरासत को अब और करीब से जानने का मौका मिलेगा। यह आधुनिक तकनीक से सुसज्जित संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसके साथ उद्यान, लैंडस्केपिंग, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। संग्रहालय में रानी दुर्गावती के शौर्य, उनके जीवन और जनजातीय संस्कृति से जुड़े प्रसंगों को अलग अलग माध्यमों से प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना का एक बड़ा आकर्षण यहां स्थापित की जाने वाली रानी दुर्गावती की करीब 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा होगी। परियोजना को करीब 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही संग्रहालय में HVAC विद्युत व्यवस्था और रोशनी से जुड़े आधुनिक इंतजाम भी किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
1: अब हम रुख करते हैं डिंडौरी जिले की तरफ, जहां प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के तहत कृषि मिलेट

0: उत्पादन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, सिंचाई तथा जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का समन्वित रूप से संचालन किया जा रहा है। पेश है डिंडौरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया की यह रिपोर्ट।
1: डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत कृषि, मिलेट उत्पादन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, सिंचाई तथा जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का समन्वित रूप से संचालन किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी जिले ने देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह के मध्य प्रथम रैंक हासिल की है। यह उपलब्धि जिले में 11 विभागों द्वारा संचालित 36 योजनाओं के प्रभावी समन्वय, बेहतर क्रियान्वयन तथा योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों का परिणाम है। योजना के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई एवं कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ ही श्री अन्न के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिले में 34,700 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो कुटकी की खेती की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
0: हमारी अगली खबर है ग्वालियर से। जिले में पिछले दिनों आयोजित हुई चौथी हॉकी इंडिया जूनियर एवं सब जूनियर विमेन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं ग्वालियर से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव।
2: पिछले दिनों ग्वालियर में आयोजित चौथी हॉकी इंडिया जूनियर एवं सब जूनियर वुमेन अकादमी नेशनल चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किए। श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिसर कंपू ग्वालियर में खेले गए सब जूनियर वर्ग के फाइनल में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी सोनीपत को पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से हराया। वहीं जूनियर वर्ग के खिताबी मुकाबले में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी सोनीपत को 3-2 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। प्रतियोगिता का समापन व पुरस्कार वितरण समारोह कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पैरा स्विमिंग इंडिया के चेयरमैन एवं हॉकी मध्य भारत ग्वालियर के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर उपस्थित थे। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर अरविंद सिंह राणा ने बताया,
3: अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ नेशनल लेवल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जूनियर और सब जूनियर का हॉकी वुमेन्स का एकेडमीज का, जिसमें इंडिया की बेस्ट 25 हमारे एकेडमीज की दो इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया इसमें, और इस बार की विजेता टीम भी हमारी थी।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है गुना से, जहां युवा संगम अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
4: गुना जिले में युवा संगम अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला रोजगार अधिकारी श्री बीएस मीना ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया,
5: जिले में निर्धारित दिवस पर हर माह युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन लगातार जारी है, जिसमें निजी क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ कौशल विकास प्रशिक्षण की जानकारी और युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में शासकीय महाविद्यालय परिसर आरोन में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों 164 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए मौके पर ही ऑपरेटर वितरण किए गए। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के 2,300 से अधिक हितग्राहियों को 9,57,00,000 का इतला वितरण कराया गया।
4: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन, वाचन पूर्व त्रिवेदी का था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय के सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाए।

0: आकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाश।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। शाम के 7:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
5: नमस्कार, BSNL लाया है आपके लिए खास फ्रीडम 2.0 ऑफर। सिर्फ ₹1 में 24 दिनों तक रोज 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र या हमारे कस्टमर केयर नंबर 1503 पर संपर्क करें। धन्यवाद। ये विशेष ऑफर केवल 12 सितंबर 2026 तक ही मान्य है। देर न करें, आज ही शानदार ऑफर का लाभ उठाएं।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
7: GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर GST की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:10 होने वाले हैं। अब वक्त है प्रादेशिक समाचार का, आकाशवाणी भोपाल से।
8: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए।
9: नए स्किल सीखने हैं पर

0: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले
1: ले आया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 कॉन्क्लेव में 13 MOU हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग शुरू करने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बालाघाट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खाली पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश दिए। और यूपीएससी ने ईपीएफओ में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के 80 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। भोपाल के रविंद्र भवन में आज कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को आधुनिक खेती और नई तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर है।
1: तो बदलाव तो आया है, लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में हमारे पास खेती के भी खेती करने में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर बहुत सारे प्रकार हैं। तो आज का समय थोड़ा बदल गया है, लेकिन ये बात सही कि पहले आमदनी थोड़ी होती थी, अब आमदनी भी बढ़ गई। मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मेरे अपने 50 बीघा के खेत में जब हम गेहूं करते थे तो वो गेहूं की जो मात्रा थी वो थोड़ी कम होती थी, और आज वही खेत है, लेकिन आज अच्छे बीज लगाने कारण से कई गुना ज्यादा खेती की हमारी फसल हो रही। तो ये बदलाव तो आया, काफी बदलाव आया।
0: श्री यादव ने बताया कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एनडीडीबी के साथ समझौता किया गया है। साथ ही हर साल 1 लाख गिर नस्ल की बच्चियां तैयार करने की योजना जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए कोचिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए 10 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे और 5 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग के साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: खेल में भी अपने बच्चे आगे रहे, खेलना भी चाहिए कि नहीं? सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, इस बार भी करें कि नहीं करें? जोर से बताओ, इस बार भी की जाएगी ताकि खेल कूद में भी हमारे बच्चे पीछे ना रहे। बोलो भारत माता की। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करेंगे, करियर काउंसलिंग के लिए बच्चों को थोड़े सहयोग की जरूरत होती है। पढ़ के हम क्या करें, तो इसी कोचिंग क्लास में हर महीने करियर काउंसलिंग के लिए भी विशेषज्ञ आएंगे जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, उनको किस रास्ते जाना चाहिए।
0: श्री चौहान ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सीएम राइज स्कूलों की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक शामिल हैं। ये पुरस्कार शिक्षण, शोध और नवाचार, विद्यार्थियों तक पहुँच और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस साल पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए थे। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा और खाली पदों पर नई भर्ती की जाएगी। आज भोपाल में वन विभाग के पदोन्नत अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि वनकर्मी, जंगल, वन्य

0: प्राणियों और वन संपदा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वन विभाग के 4,506 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। उन्होंने सभी पदोन्नत कर्मचारियों को बधाई दी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बालाघाट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार उपलब्ध रखने और खाली पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की नियमित जाँच और निर्माणाधीन स्वास्थ्य सुविधाओं को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने सरकारी भविष्य निधि संगठन में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के 80 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 11 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज के समय में स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है। आज भोपाल में आयोजित समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रतिभाशाली युवा और पर्याप्त संसाधन है। केंद्रीय संस्थानों को कौशल शोध और नवाचार के जरिए प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक संस्थान एक संकल्प मध्य प्रदेश के भविष्य निर्माण की कार्य योजना है। कॉन्क्लेव में शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थानों के बीच 13 MOU भी हुए। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर यानी आज प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। खंडवा में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की भव्य महासवारी श्रद्धा और उत्साह के बीच निकाली गई। वहीं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कल 25 अगस्त को सीवन नदी तट से कुबेरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा निकालेंगे। उधर जबलपुर में श्रावण के अंतिम दिन यानी आज सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भीड़ देखी गई। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकाली गई। अनूपपुर के अमरकंटक में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अमरकंटक पहुंचकर जालेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और सुख शांति की कामना की। आपको समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल 25 अगस्त को ग्वालियर जिले के किसानों से संवाद और कृषि नवाचारों पर चर्चा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 9,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 203 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की गई है। अशोकनगर जिले के 68 हितग्राहियों को 1,48,00,000 रुपए की राशि का अंतरण किया गया। दमोह में अधिकारी कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आमजन को शासकीय सेवाओं का लाभ बिना किसी असुविधा के समय पर उपलब्ध के उद्देश्य से लगातार आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं। रायसेन के सांची मार्ग स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज जिला विकास समन्वय और मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। शिवपुर में सघन मलेरिया नियंत्रण और रोकथाम गतिविधियां संचालित की गई। अभियान के दौरान ग्राम कराहल और ककरधा में कुल 155 घरों का लार्वा सर्वेक्षण किया गया। धार की भूशाला में मां बागदेवी मातृशक्ति कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति शामिल हुई। राजगढ़ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर इच्छित गढ़पाले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिर ने जनगणना संबंधी कार्यों की समीक्षा की और सभी SDM को संबंधित जानकारी निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। मंडला में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्टर राहुल नामदेव थोटे ने स्वदेशी स्वसहायता समूह सरी नैनपुर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखियों की खरीदारी की। अनूपपुर में 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाएगा। गुना के NCC कैडेट्स के द्वारा टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत शासकीय जिला चिकित्सालय गुना का निरीक्षण किया गया। छिंदवाड़ा के जुनारदेव में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
2: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
3: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
4: नमस्कार, BSNL लाया है आपके लिए खास फ्रीडम 2.0 ऑफर। सिर्फ ₹1 में 24 दिनों तक रोज 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र या हमारे कस्टमर केयर नंबर 1503 पर संपर्क करें। धन्यवाद। ये विशेष ऑफर केवल 12 सितंबर 2026 तक ही मान्य है। देर न करें, आज ही शानदार ऑफर का लाभ उठाएं।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
5: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर GST की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
9: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना।

जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल 102 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा आकाशवाणी भोपाल से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें
2: आपकी अपनी विविध भारती आपके अपने टीवी सेट पर डायरेक्ट टू होम डीटीएच
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें
3: भैया बहनों अपन और जाना था कि अपन और खेती किसानी के जो काम हुए थे उनमें कई बार बहुत सारी जानकारियों की जरूरत पड़ा थे और जो जानकारी यदि अपन बिना कहूँ जाए अपने फोन पे मिल जाए तो कितनी अच्छी बात हुए ये कहना सरकार ने किसान कॉल सेंटर स्थापित करे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जाए बहुत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है जिसकी शुरुआत 21 जनवरी 2004 को शुरुआत हुई थी और पारंपरिक रूप से किसानों को कृषि अधिकारियों से मिलवे या कृषि विज्ञान केंद्रों तक जावे आवे में बहुत समय और धन खर्च करना पड़ा तो अब बस आपकी जरूरत नहीं पड़े किसान कॉल सेंटर पर फोन लगाओ और अपनी जो भी कुछ जानकारियां चाहिए वो थे सभी जानकारियां पानी मिल जाते हैं जाके लाने टोल फ्री फोन नंबर सो ये वो नंबर आप और हम बता रहे हैं 1800-1801551 माने 1800-180-1551 जो नंबर मुफ्त नंबर हुआ था टोल फ्री नंबर है और जो साल भर चला थे सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जामे सारी सेवाएं उपलब्ध रहे थे ये में आप सारी जानकारियां ले सका थे और सब में बड़ी बात यह है कि जामे जो जानकारी मिला थे वह अपन को अपनी खुद की भाषा में मिला थे जैसे अपन बुंदेलखंडी भाषा बोला थे तो अपन चाहे तो बुंदेलखंडी में पूछे तो बुंदेलखंडी में अपने जवाब मिले निमाड़ी में जवाब मिले जो अपने तक और दूसरी भाषाएं उन सारी भाषाओं में जामे अपने जवाब मिलाते हैं और विशेषज्ञ अपनी ये सब सारी चीजें बताते हैं भैया बहनों अपन जा के बारे में कुछ और बातें करें मनो अब जो चिट्ठी आ गई अपनी नियमित श्रोता बाग बुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम मिलेंद्र नेताम देवेश नेताम अंबिका और कुमारी योगिता नेताम और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर यमुना साहू प्रेम साहू मिथिलेश सूरज और ज्योति इन सबकी पसंद पे अपन अब सुनते हैं रजनी अर्जरिया को गाओ हो जो मल्हार गीत

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो भैया बहनों, अपन औरों ने बात करी थी कि जो किसान कॉल सेंटर है वे बहुत बढ़िया तरीके से अपन औरों को व्यवस्था दे रहे हैं। किसान कॉल सेंटर में अपन ही हमने आपको जैसे बताई कि पूरे 12 महीना कुछ छुट्टी उधर नहीं हुए, बस सवेरे 10 बजे 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जहाँ अपन जो चाहो सुबह पूछ सका थे। जहाँ में 3 स्तर होते हैं जानकारी देवे के लाने, पहलो स्तर तो जो रहे थे कि जैसे वो एक जो फार्म के जो फार्म टेली एडवाइजर कहलाते हैं, जो बिल्कुल शुरुआती लेवल पर जो काम कराते हैं, सुबह आपकी टेलीफोन कॉल अटेंड कराते हैं और प्राथमिक रूप से जो समाधान हुए थे तो वो समाधान दिए थे। जब उनके आगे के स्तर की या उनसे ज़्यादा गंभीर बात होते जो को जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं तो अगले स्तर के अधिकारियों से या अगले स्तर के विशेषज्ञों से बात करी जाते हैं, जो उन जटिल तकनीकी या वैज्ञानिक सवालों को जवाब दिए थे। ऊर्जा को जवाब दे वाले जो विशेषज्ञ रहे थे वे राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों की जो उनके सर साथ उनकी चर्चा हुए थे वो फिर भी जाकर जवाब दिए थे। और कोई बात मान लो उनसे भी आगे के स्तर की यदि हुए तो तीसरे स्तर की बात हो तो जेब नीतिगत या कछु राज्य स्तरीय शोध से जुड़े हुए मामला हुए तो बाकी कृषि अनुसंधान संस्थान जो हैं और जो राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके नोडल अधिकारियों से बात करी आते हैं। तो अपन को पता ही है कि जैसे अपने मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को, तो इन 2 जगहों के जो विशेषज्ञ हैं वे अपन है ये तीसरे स्तर की माने सबसे ऊंचे स्तर की जो जानकारी होते हैं तो ये जानकारी होते हैं कि लोग देते हैं अपन औरों को। एक साथ साथ में फसल सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिला थे कॉल सेंटरों से, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक के साथ साथ में जो मिट्टी को जो स्वास्थ्य होते बाकी बारे में जानकारी मिला थे, मौसम और मंडी भाव के बारे में जानकारी मिल जाते, आवे बारे मौसम कैसो रहे जाके बारे में जानकारी दी जा सका थे मिल सका थे जा किसान कॉल सेंटर से। और पशुपालन और डेयरी को भी अपने जो किसान भैया ने व्यवसाय करा थे उन्होंने जो जरूरी जो जानकारी होते भी मिल जाते हैं। और एक साथ साथ में जो सरकारी योजनाएं हैं इन सब जानकारियों के बारे में सुई इन किसान कॉल सेंटर से अपन फोन करके पूछ सकते हैं। भैया बहनों, आप और से ये बारे में और बातें कर रहे हैं, मनोज जाए एक चिट्ठी अपने नियमित श्रोता है भोपाल से, योगेश्वर से भारती, डॉक्टर शेखावत से भारती, भैरव प्रताप से, लोकेंद्र प्रताप से, प्रेमाबाई, दुर्गाबाई और अमिता भारती की, आवास कॉलोनी बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारती, कुशाबाई, कुमारी लक्ष्मी, महेंद्र सिंह, सचिन और तरु भारती की। तो इन सब की पसंद पे अब अपन सुनाते हैं रुद्र दत्त दुबे को गाओ जो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भैया बहनों, अपन और किसान कॉल सेंटर के बारे में बात कर रहे थे। जैसे मध्य प्रदेश भारत को बहुत प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें अपनी उच्च कृषि विकास दर के लाने लगातार कई बार पुरस्कार से मिले बहुत सारे मध्य प्रदेश को, तो ऐसे समय में मध्य प्रदेश के किसानों के लाने किसान कॉल सेंटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जैसे एक जरूरी बात तो यही है कि तरह के जो किसान हैं वे अपनी उनकी जो आंचलिक बोलियाँ हैं, जैसे निमाड़ी है, बघेली है, बुंदेली है या मालवी है, तो इन बोलियों में किसान कॉल सेंटर से उन्हें किसानों को जानकारी मिल जाते हैं। और जाके साथ साथ में हमने जैसे आपको पहले बताई कि जो इतना के कृषि विश्वविद्यालय हैं अपने मध्य प्रदेश की, इन कृषि विश्वविद्यालयों से बहुत जो तकनीकी किस्म को सहयोग मिला था

बस सहयोग के साथ साथ में जो बहुत जरूरी जानकारियां होते हैं वे जानकारियां होते हैं मिल जाते हैं। एक के साथ में ये संस्थानों के जो वैज्ञानिक हैं वे राज्य की जो मिट्टी है, जैसे अपने मध्य प्रदेश में काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी होते हैं और जैसी जलवायु है, बाकी अनुसार वैज्ञानिक सलाह भी दिए थे और जो अपने की प्रमुख फसलें हैं उन प्रमुख फसलों के बारे में सही जानकारियां ये विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ लोग रहे थे उन्होंने मिला था, जैसे सोयाबीन और उड़द, गेहूं, चना, संतरा। अपने छिंदवाड़ा में जैसे वो आगर मालवा क्षेत्र में संतरा और लहसुन की बहुत खेती कर रहे थे अपने किसान भैया आ रहे हैं, सो उन्होंने को जाके बारे में जानकारियां इसमें मिला थे। एक के साथ मध्य सरकार की डिजिटल जो पहल हैं बेसिक किसान कॉल सेंटर से जुड़ी गई हैं, जैसे मध्य प्रदेश को एमपी किसान ऐप है जो मोबाइल को ऐप है और ई उपार्जन करके एक ऐप है, तो जो समर्थन मूल्य पे गेहूं धान और ये उपज की पंजीयन तिथियां इनकी कैसी का हालत है, बाजार में कैसी का मांग है, इनकी कैसे का भाव चल रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सी जानकारी मिला थी। तो कहने का मतलब जो है कि किसान कॉल सेंटर को अपन औरों को उपयोग जरूर करना चाहिए और किसान कॉल सेंटर को उपयोग करवे कराने अपने पास में किसान कॉल सेंटर को नंबर होना चाहिए। नंबर हमने आपको पहले बताओ एक बार फिर से दोहरा दिए थे 1881 जो किसान कॉल सेंटर को नंबर है, बिल्कुल फ्री में जहाँ कॉल लगा थे कोई पैसा नहीं लगे और बाकी साथ साथ में आपको बहुत जरूरी जानकारियाँ बिल्कुल मिल जाते हैं। तो ये सब बात कर रहे हैं, हमारे हाथ में जो चिट्ठी आ गई है जल की है, चार मीनार चौक गणेश पनरिया से दरियानामल अनीता मोटवानी, राजेश रेशम और भाटापारा से बचकामल आशा देवी, और जय एक चिट्ठी है अपने नियमित श्रोता है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार, सविता देवी, स्वाति और पूर्व माखीजा परिवार, इन सब की पसंद पे अपन सुनाते हैं समूह स्वर में जो हरदौल गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भैया बहन रो, अपनों ने जाना था कि अपन गांव में रहत भाई में बहुत सारी अपने को व्यवस्थाएं करने पड़ते हैं। आजकल एक बड़ा अच्छा काम गांव में होने लगो है, वो है ग्रामीण पर्यटन को। आजकल बाहर के लोग बाग आते हैं भी जेहो चाहते हैं गांव में, और बिल्कुल गांव जैसे जीवन बिता के गांव में बढ़िया अच्छे चूल्हे में बनत भाई रोटी और गाँव के जो अपने खाना पीना होते वैसे खावो पीबो और ये सब चीजें देख को और ये सब चीजों है जीवे को इन सब चीजों के साथ में रहवे को मैं उन्हें बड़ो मजा आते। तो आजकल ग्रामीण पर्यटन को बड़ो महत्व बढ़त जा रहा है आजकल, और वो से ही अपनी किसान भैयाओं के लाने एक बहुत फायदे की चीज शुरू हो चुकी है।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो भैया बहनों अपन बात कर रहे थे कि ग्रामीण पर्यटन को का है, तो हमें कहा हुए थे कि जैसे एक होम स्टे बना सका, जैसे अपन ने पास में जगह है अपने घर ठीक ठाक तरीके से अपन बना सकें, कोई आके रह वो चाहे अतिथि आए सुबह आके रह सकें, उनके लाने बढ़िया जैसे अपने गांव में खटिए रहते हैं उन पर खटिया बिछवा दी उनके लाने ठहरवे के लाने और जो भी जरूरी चीजें होती हैं सब सारी सारी व्यवस्थाएं करवा दी, उमदा अपने चूल्हे पे बढ़िया अपने तवा पे मट्टी के तवा पे सिकत भाई रोटियाँ और मट्टी के बर्तनों में बनत भाई और साग सब्जी और जो दूसरे बटलोई हैं उन पे बनत भाई खाना की दूसरी चीज़ें, तो इन्हें बनत भाई देख के उन्होंने को बड़ा अच्छा लगा थे, बड़े खुश हुए थे वे लोग। और अब के संगे संगे जैसे कई तो और बड़े शौकीन लोग ऐसे से ही आते हैं कि उन्होंने कह भैया चलो हमें फूल फल सब्जी हम खुद ही टूड़ हैं और ट्रैक्टर से ही चले हैं और घोड़ा यदि घुड़सवारी करे की व्यवस्था हो जाए तो वो सही है, गैया भैंसों को दूध निकालने हैं जिस सवेरे काम करे हुए को सही उन्होंने को बड़ा शौक लगा थे। सो जिस सवेरे शौक जो हैं इन शौक को अपन एक व्यवसायिक तरीका को उपयोग भी कर सका थे और इनको व्यवसायिक उपयोग ग्रामीण पर्यटन के रूप में हो रहा हो, जाकर एक बड़ा फायदा जो सी हो रहा है गाँव से लोगों को जो पलायन हो रहा हो तो गाँव छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे थे, तो अब उन्हें गाँव के गाँव में एक अच्छा बढ़िया रोजगार से मिल रहा हो, अच्छा बढ़िया कमाई को जरिए से मिल रहा है और बड़ा सम्मानजनक जरिया है, बड़ा सम्मानजनक तरीका से भी हो रहे हैं जो सब काम कर रहे हैं। तो भैया ये सब चीजों पर सुई अपने ध्यान देने और अपने पास में मान लो ऐसी कुछ व्यवस्था बन जाए तो अपन जाके लाने सुई व्यवस्था बना के रखें। एक जो चिट्ठी आ गई अपने पास में हाथ में आई है, जाहे लिखी है जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ ग्राम कोहरवास तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर से विनोद कुशवाहा, नारायण से मनकोबाई कुशवाहा, निशा प्रियंका बंटी कपिल और ब्रजभान की।

और जय चिट्ठी है अपने नियमित श्रोता है कवाई 12 राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव की। तो इन सब की पसंद पे अपन सुना थे जो त्यौहार आ रहा और राखी को त्यौहार और राखी के गीत की लाने लिखो तो जो राखी गीत है सविता यादव और राम कुमार प्रजापति को गाओ भाव तो अपन उन्होंने सुना था जो गीत।

0: भैया बहनों देखो अब चलवे की बिरिया हो रही है तो लेते हैं आप और उनसे विदा। विधानसभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहनों को आनंद कृष्ण भैया की दो ही हाथ जोड़ के हैं राम राम।
1: आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक और संयुक्त घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: राजारमन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: राजारमन जी, विशाखापट्टनम में जो ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा और कौन से ऐसे विषय रहे जिन पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई? और ये जो ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र पारित हुआ है, इसका खेल सहयोग की दृष्टि से क्या महत्व है?
2: सबसे पहले हम सबको ये बात ध्यान में रखना होगा कि भारत ब्रिक्स का चेयर है, अभी 2 साल तक चेयर रहेगा। और अपने अफवाही में जब आप चेयर हो तो आप कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं, और भारत के खेल मंत्री बाकी खेल मंत्रियों के साथ मिले हैं। विदेश के ब्रिक्स देशों के कई सारे खेल मंत्री आए हुए थे विशाखापट्टनम में, उनके साथ चर्चा हुई और उसके बाद एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन हुआ जहां उन्होंने 3 मुद्दों की बात की है। एक वर्किंग ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई है जहां पे स्पोर्ट्स साइंस होगा, एआई का प्रयोग हो सकता है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन होगा और भारत इसको लीड करेगा। और इसके साथ ही क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्पोर्ट्स टूरिज्म और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, मेक इन इंडिया की बात होती है लगातार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव होगा जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए नवंबर महीने में उदयपुर में होगा। और तीसरा जो ग्रुप है वो जो हमारे अपने ट्रेडिशनल खेल है जैसे कबड्डी और खो खो, उन खेलों को और योगा, उन खेलों को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। बाकी ब्रिक्स के देश भी अपने खेल के बारे में बात करेंगे। ये 3 मुद्दों को लेके एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन कल विशाखापट्टनम में हुआ है।
1: राजारमन जी, अभी डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स खेल साझेदारी बनाने की आवश्यकता पर विशेष तौर पर जोर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एथलीटों, कोचों और खेल विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम सहयोग करते हैं तो सभी सदस्य देशों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये जो उन्होंने पहल की है, ये जो बात उन्होंने कही है, इसके क्या मायने बनते हैं?
2: ये बहुत जरूरी है कि बाकी देश जो ब्रिक्स के ही क्यों ना हो और ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज क्यों ना हो, पार्टनर कंट्रीज भी हो, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। चाइना अगर कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, चाइना अगर कुछ अपने जो तौर तरीके हैं खेल बढ़ाने का वो अपने साथ शेयर करेगा बाकी ब्रिक्स देशों के साथ, उनका भी भला हो सकता है। ब्राजील जैसा खेल जहां पे फुटबॉल हम सब जानते हैं बहुत ही पॉपुलर है, एथलेटिक्स वहां पे काफी पॉपुलर है, उनके साथ कुछ तालमेल बैठता है तो बहुत अच्छी बात होगी। साउथ अफ्रीका जैसा देश या रशिया जैसा देश जहां पे खेल को बहुत अहमियत दी जाती है, इनके साथ बैठना, इनके साथ एमओयूज बनाना और फिर उनसे सीखना और फिर कुछ जो सीख है उसको लेके हम जो 2036 ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं उसके लिए अगर प्रयोग करें और फिर हमारे अपने देश में खेल का बढ़ावा हो, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। मनसुख मांडविया जी का यही मकसद रहा होगा कि हम कुछ बाकी देशों से सीखें और फिर हमारे अपने देश को जो हम चाहते हैं कि टॉप 10 में ओलंपिक गेम्स में आए, मेडल तालिका में हम ऊपर बढ़े, इसका भला हो सकता है न सिर्फ हमारे देश का, बाकी देश जो पार्टनर कंट्रीज है उनका भी भला हो सकता है। और ये अच्छी बात है कि एक बैठक हुई है, वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग आया है, उससे हम सब आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया का एक बेहतरीन ये एक डेवलपमेंट हो सकता है क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसकी बदौलत देश की उन्नति हो सकती है
1: जी।
2: और ये हमारे स्पोर्ट्स पॉलिसी में लिखा गया है, इसको लेके हम सब आप सोच रहे हैं कि खेल को और कैसे बढ़ावा दें, ये मनसुख मांडविया जी का सोच है और फिर यही वजह हो सकती है कि उन्होंने ये 3 मुद्दों की वहां पे बात की
1: जी। जैसे आपने 3 मुद्दों का जिक्र किया है तो खेल के कार्य समूह की स्थापना की भी बात की गई है। आपने भी बताया कि खेल में विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन जैसे विषयों को शामिल करने की बात की जा रही है, तो आधुनिक तकनीकें ये जो है ये खेल और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को किस प्रकार बेहतर बना सकती है, खासतौर पर जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत अब लगातार अंतरराष्ट्रीय जो टूर्नामेंट होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग भी लेता है और मेडल्स भी अब पहले की संख्या में आ रहे हैं।
2: खेल विज्ञान की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन की बात करो या फिर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें या फिर फिजियोथेरेपी और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात करें, ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें, तो स्पोर्ट्स साइंस का बहुत बड़ा योगदान है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। ये बात हमारे समझ में शायद पिछले 10 साल में आई है और हम स्पोर्ट्स साइंस को ज्यादा यूज करने लगे हैं। अभी भी हम कुछ 10-15 साल पीछे होंगे अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात

0: अमेरिका की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनसे हम 10-15 साल पीछे हैं। इसीलिए शायद ये बहुत अहम है कि स्पोर्ट्स साइंस को अपनाना ग्रास रूट लेवल पर खास करके, फिर ऑटोमेटिकली वो आप अगर स्पोर्ट्स साइंस को अपनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो एलिट लेवल में पहुंचते पहुंचते आप उसका प्रयोग ज्यादा करेंगे
1: जी।
0: आज की तारीख में कुछ थोड़ा सा रिलक्टेंस है स्पोर्ट्स साइंस को यूज करने का एथलीट के मन में, लेकिन वो बदलाव आ रहा है। नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी बता दिए हैं कि स्पोर्ट्स साइंस को किस तरीके से अपना सकते हैं और अपना खेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर हम समझ सकते हैं कि सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स नहीं लेकिन साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स और जो टैक्टिकल अवेयरनेस है बच्चों का ये कैसा है, इसको लेके अगर एआई को यूज करते हुए एक टूल बना सकते हैं तो शायद खेल बहुत आगे बढ़ेगा, खास करके हमारे देश में जहां पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बच्चों का अगर टैलेंट जल्दी आइडेंटिफाई करना है तो एआई का इस्तेमाल जरूर हो सकता है।
1: रजनमन जी, मेक इन इंडिया, प्ले इन इंडिया और ग्रो विद इंडिया के माध्यम से भारत खेल क्षेत्र में बदलाव लाना चाहता है। यहाँ पर हम बात इसकी करते हैं कि वैश्विक निर्माताओं, प्रौद्योगिकी की कंपनियों और निवेशकों को भारत में अगर इस पहल के माध्यम से आकर्षित किया जाता है तो हमें और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। घरेलू खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देना भी आत्मनिर्भरता की दिशा में कितना महत्वपूर्ण है।
0: बहुत सारा जो खेल का इक्विपमेंट है वो हम इंपोर्ट करना पड़ता है हमको, चाहे वो जैवलिन ही क्यों ना हो। अभी बनने लगा है भारत में जैवलिन, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जैवलिन बनने लगा है। मैं जैवलिन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफी पॉपुलर है, लेकिन बहुत सारा जो इक्विपमेंट है ये हम इंपोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्ट को कम करें और फिर हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दे, मैन्युफैक्चरिंग और बेहतर करें तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। वो सही टेक्निक और सही इक्विपमेंट अगर यूज करने लगे बचपन से, काफी यंग एज से अगर यूज करने लगेंगे तो आगे चल के उनका भला हो सकता है। इसीलिए मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। अगर हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को समझ आती है बात, और क्योंकि हम ग्लोबल कंपटीशन करना है, जो अमेरिकन कंपनी हो या यूरोपियन कंपनी हो या जापान या कोरिया के कंपनी हो, इनके साथ अगर आप टक्कर लेना है तो आपका स्टैंडर्ड उठाना है। ये शायद एक बहुत अहम बात है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव होगा नवंबर के महीने में उदयपुर में, ब्रिक्स के देश वहां पे मिलेंगे और ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि इनको एनकरेजमेंट मिलेगा ब्रिक्स कंट्रीज में जाकर ये अपना कुछ सामान एक्सपोर्ट कर सके।
1: रजनमन जी, भारत में पैरा स्पोर्ट्स और खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। खेलों को अधिक समावेशी बनाने के लिए दिव्यांग खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों को समान अवसर देने की बात भी की जाती है, तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये कैसी भावना को आगे बढ़ाती है और खेल की दृष्टि से यदि हम इसे देखें तो इसके क्या महत्व आपको नजर आते हैं, कैसा आपको लगता है कि ये एक अपने आप में अनूठी पहल है।
0: अगर आप ओलंपिक गेम्स के स्तर की बात करें तो वहां पे अधिकतर मेडल महिला जीतती है। अगर आप चाइना को देखें या इवन अमेरिका को देखें, वहां पे महिला ज्यादा जीतती है मेडल। और हमारी सरकार लगातार प्रयास करते आई है कि बहुत ज्यादा महिला, उनका संख्या बढ़े जो खेल में भाग लेते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप होकर आए, ये अच्छी बात है। एक तो इंटरनेशनल कंपटीशन में क्योंकि मेडल्स महिला जीत सकती है, ज्यादा जीत सकती है और हमारी महिलाएं जीती भी है, ये जरूरी हो जाता है कि और ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा महिला खेले और उनका जो स्टैंडर्ड है वो बेटर होता जाए। दूसरी ओर अगर हम बात करें सिर्फ सोशल डेवलपमेंट की बात करें
1: जी,
0: जब लड़का या लड़की, लड़कियां ज्यादातर खेलना कम करती हैं, अगर लड़की खेलने लगती है तो समाज का एक बढ़ावा हो सकता है क्योंकि खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर ज्यादातर लड़कियों को हम खेलने नहीं देते तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। खेल आपको एक भावना सिखाती है जहां पे आप टीम वर्क सीख सकते हैं, जहां पे लीडरशिप सीख सकते हैं, हारना और जीतना सीख सकते हैं, जीना सीख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा महिला, खास करके युवा लड़कियां हमारी खेल में आए और फिर हिस्सा ले, नॉट जस्ट टू कम्पीट बट वो अपना डेवलपमेंट हो सकता है, वहीं से समाज का भी डेवलपमेंट हो जाए।
1: जी राजनवन जी, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्र निर्माण में खेलों की भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया है और उनका ये कहना है कि भारत के खेल परिवेश में अवसरों का निर्माण हो रहा है, बदलाव आ रहा है। आपसे मैं पूछूं तो किन किन क्षेत्रों में हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि खेल देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान जरूर देते हैं।
0: सबसे पहले अगर हम जो ग्रास रूट, जो हमारे गली मोहल्ले में प्लेग्राउंड्स है, चाहे वो म्युनिसिपल प्लेग्राउंड क्यों न हो या फिर पंचायत का प्लेग्राउंड क्यों न हो, वहां पे कोचेस सही हो

0: वहां पे बच्चों को खेलने का जो मजा है वो सही तरीके से सिखाए, जो वैल्यूज है दोस्ती करने का या फिर एक्सेलेंस की ओर बढ़ने का या फिर खेल के जो रूल्स है जो नियम है उनको रेस्पेक्ट करने का, ये अगर हम सीख लेते हैं तो नॉर्मल लाइफ भी हमारा बेहतर हो सकता है। लेकिन कोचेस बहुत जरूरी है, कोच डेवलपमेंट पे फोकस देना। और जो खेलो इंडिया का जो अभी हाल ही में बजट अनाउंस हुआ है उसमें खुशी की बात यह है कि कोच डेवलपमेंट के लिए काफी पैसा स्पेयर हुआ है। अगर हम उस स्तर पर ग्रासरूट लेवल पर जब बच्चा खेलने जाता है वहां पे अगर कोचिंग सही हो जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हमारा बढ़ जाएगा। जैसे हम स्कूल में करते हैं, जब आप बढ़ते होते हैं तो कोई आपको अक्षर सिखाते हैं, उसके बाद कोई वाक्य बनाना सिखाते, उसके बाद आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर एसेस लिखते हैं, किताब भी लिख सकते हैं। आपको हर लेवल पे एक अलग अध्यापक होता है। वही तरीके से कोचिंग भी बहुत जरूरी है कि ग्रास रूट में अच्छे कोचेस मिले, तब जाके भारत का खेल का जो निर्माण है ये और अच्छा हो सकता है।
1: जी, ब्रिक्स खेल सहयोग में एथलीटों और कोचों का अगर आदान प्रदान होता है तो इसका क्या महत्व हो सकता है? अलग अलग देशों के खिलाड़ी और प्रशिक्षक एक दूसरे के देश में पहुंचे या उनसे बात करें, अनुभवों को साझा करें, तकनीकों को साझा करें, तो भारत को इससे किस तरह से लाभ हो सकता है? और ये आदान प्रदान जो होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की क्षमता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कैसे सहायक होगा?
0: ये टू वे ट्रैफिक होगा। ब्रिक्स का जो अभी हुआ है, बात हो रही है, लगातार होता आया कई सालों से, ये टू वे ट्रैफिक है। उदाहरण की बात करूं मैं तो, अगर ब्राजील से कुछ फुटबॉल कोचेस आते हैं इधर और फिर हमारे बच्चों लड़के लड़कियों को सिखाते हैं सही तौर तरीके फुटबॉल खेलने के, टेक्निक सही हो जाता है उनका, हमारे कुछ शूटिंग के कोचेस जा सकते हैं वहां पे। तो ये पार्टनरशिप ऐसे ही बनता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो एमओयूज बनते हैं या फिर ऐसे ग्रुप्स, जब ब्रिक्स जैसा एक बड़ा सा ग्रुप है इसके अंदर भी अगर लगातार एक्सचेंजेस होते रहे तो बहुत अच्छी बात होती। शायद पिछले साल कजाकिस्तान में या कहीं ब्रिक्स के देश मिलकर खेल खेले थे, पोजदान में हुआ था खेल, और ऐसा जगह जब हम मिलते हैं तो हमारा खेल और बेहतर होता है। ये हमारी ए टीम जाती नहीं है वहां पे, जो डेवलपमेंट लेवल एथलीट्स हैं उनके लिए भला होगा कि एक और अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन, कंपटीशन में भी हो सकता है और ट्रेनिंग में भी बेहतरी हो सकती है, जो भारत और दूसरे देश है ब्रिक्स के, इनके साथ अगर हम सब का तालमेल बैठ जाए। और यही बात है कि विशाखापट्टनम का डिक्लेरेशन है कि हम सब मिलके काम करेंगे, हमारी उन्नति होगी और एक दूसरे का साथ देते देते दुनिया का भी भला हो जाएगा।
1: खेलों के माध्यम से युवा विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ये माना गया है कि इसमें देश के युवाओं का व्यक्तित्व निर्माण होगा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और साथ ही खेलों को आगे बढ़ाने में भी इस पहल का काफी महत्व हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो व्यवहारिक सहयोग हम इस पहल के माध्यम से करने जा रहे हैं, इसका फायदा हमारे देश के युवा किस तरह से उठा सकते हैं?
0: अगर इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ता जाएगा, खासकर के अगर आप एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम में शामिल नहीं होते, आप अगर डेवलपमेंट एथलीट है तो आप इन देशों में जाके खेल सकते हैं और अपना कॉम्पिटिटिव स्तर उठा सकते हैं। कुछ ऐसे देश है जहां पे एथलेटिक्स हो या स्विमिंग हो या शूटिंग हो, ये अच्छे स्तर पर होता है। कुछ देश है जहाँ पे फुटबॉल और बेहतर होता है। तो हमें सिर्फ ये देखना होगा हमारे युवाओं को हम कौन से ऐसे देश में जाके भेज सके ताकि उनका कंपटीशन का जो स्टैंडर्ड है वो और बेहतर हो जाए, ताकि वो पूरी तरीके से तैयार हो के ओलंपिक गेम्स में अपना जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसको सही तरीके से दिखाए और फिर भारत के लिए कुछ और मेडल से कराए। एक बहुत अच्छा अवसर है भारत के पास, भारत के युवाओं के पास, कि ब्रिक्स देशों में जाके खेले और फिर अपना खेल को बेहतर करें।
1: जी राजा रमन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक और संयुक्त घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं प्रिया पांचाल की आवाज में खूबसूरत फिल्म के गाने के साथ। अमिताभ वर्मा और स्नेहा खनवलकर हैं गीतकार और संगीतकार हैं स्नेहा खनवलकर।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: पहली। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सिद्धांत माधव और पावनी पांडे की आवाजों में वेलकम बैक फिल्म का गाना अराफत। महमूद हैं गीतकार और संगीतकार हैं सिद्धांत माधव।

0: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बे ख्याल हो कर यूं ही चूलिया किसी ने।
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
2: जाने क्यों ना
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए लुका छुपी फिल्म का गाना। इसे गाया है करण शेम्बी ने, निर्माण ने लिखा है इसे और तनिष्क बागची गोल्ड बॉय ने संगीतबद्ध किया है।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें,

0: और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, अगला गाना हमने लिया है बागी फिल्म से, रफ्तार, नेहा कक्कर और मंज की आवाजें। रफ्तार और शबीर खान ने इसे लिखा है और मंज म्यूजिक की तर्ज है।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया
3: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश बजरंगी भाईजान फिल्म से विशाल ददलानी, नकश अजीज और प्रीतम की आवाजें। मयूरपुरी ने लिखा इसे, संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने

0: ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
2: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
1: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
3: भारत को $70 trillion की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाएं। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई

0: ये जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। आईएमडी ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 पर बंद हुआ।
1: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत ये टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Peking for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha.

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए।

आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954, अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हां वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ढोल, ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कन्हैया जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता कामों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता कामों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कांग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को आप करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती हैं।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज़।

कल्याण जी, आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संग।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का। ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: कि आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मानापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मानापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मानापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और

निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब, जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है। और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है, उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब वक्त है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: मुख्यमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक है। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहां पर्याप्त

0: लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्त तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jayashankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jayashankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
3: Our economic cooperation, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
2: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing on a 2-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representative talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and Foreign Minister Wang Yi scheduled tomorrow. Announcing the special representative talks at a media briefing today, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jia said Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. India has stressed the need for diversified, adequate, predictable and sustained international financing to support land restoration and strengthen resilience to drought. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav said this in Ulaanbaatar, Mongolia today. He was addressing the ministerial dialogue on innovative financial mechanisms for healthy land and drought resilience during the 17th session of the Conference of the Parties to the UN Convention to Combat Desertification. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India will amend existing regulations and introduce new rules over the next 2 months to address concerns raised by companies seeking to set up manufacturing operations in the country. Speaking during a program in Tokyo, Mr. Goyal said he met two major corporations earlier in the day, one planning to establish semiconductor equipment manufacturing in India and another operating in the automotive components sector. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi today, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial in absentia provisions, and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating UAPA cases. In men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal powered India to a hefty 503 for 9 declared in their first innings against host Sri Lanka on a rain-disrupted second day of the Colombo Test. In reply, Sri Lanka lost two early wickets at just 8 runs when stumps were drawn today. In hockey, the Indian men's team crashed out of the semi-final race of the FIH World Cup after losing to Argentina 3-5 in a second-round pool match at Amstel Wien. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. The IMD has forecast heavy rainfall over East and Northeast India, Uttar Pradesh, South Interior Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Mahe and Vidarbha and Madhya Maharashtra tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
4: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर अपने बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।